मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315

0: ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबूधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए आप और हम सुनते हैं श्री राम चरितमानस।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

अभी आपने सुना श्री राम चरितमानस, स्वर अनुराधा पौड़वाल, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुविचार, जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि बहुत से रोगों का नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की स्तुति बहुत से दुखों और कष्टों का नाश कर देती है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय सवेरे के 6:45 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं तीसरी कसम, फिल्म का गीत मुकेश का गाया, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल के संग राजकुमार। जी हाँ, ये है फिल्म। मोहम्मद रफी, हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन।
1: जाते हुए देखा है वो, देखो मुझसे

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं साहिब बीबी और गुलाम, फिल्म का गीत आशा भोसले और साथियों का गाया। शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल के संग ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों सवेरा हो चुका है, सूरज धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है, उठिए जागिए दौड़िए और सूरज की चमक में नहा उठिए।

ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल के संग। दोस्तों, खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर दिन जीने का एक अंदाज है।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल के संग आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। बने रहिए पूरे घंटे और सुनिए बेहद खूबसूरत नगमे।

0: ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर का मौसम गर्म है तो कभी बहुत ज्यादा गर्म है।
1: तुम लड़की हो।
0: और ऐसे में हम दुआ करते हैं कि बारिश जल्दी हो।
1: तुम आई तो
0: और ये मौसम करवट ले ले।

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
1: दोस्तों कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत
0: फन
1: इसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे एहसास ही काफी होते हैं।

आपके हाथ में चाय हो, तो ऐसे में म्यूजिक की कमी हम पूरी कर देंगे। इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत,

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं और ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा।

तो दोस्तों ये था कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और इसका सफर आपने तय किया अपने दोस्त शराफत अली के साथ।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे। इसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरगेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस।
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: दे ऑल कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट थ्रेट्स फॉर अस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही।

0: एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को

0: अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा अपने लोगों पर, अपने आप पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल, इस मोटिवेशनल कोट के साथ में स्वागत है आपका आकाशवाणी की जोधपुर केंद्र पर। मैं हूं आपकी आज की होस्ट मनीषा जोशी बोरा और मेरे साथ हैं
0: मीता मुल्तानी।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल समय हो गया है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का। प्रोग्राम वो जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। इसी के साथ दोस्तों आपको रखते हैं अपडेट, लेकिन इन सबसे पहले हो जाए हमारी टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है। दोस्तों, आज ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दे रहे हैं नरेंद्र सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र सोलंकी।
0: कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार।
1: कंसोल पर हमारा साथ दे रहे हैं शराफत अली।
0: और एफएम पर कंसोल संभाल रही है उद्घोषिका मोनिका।
1: इसी के साथ ही दोस्तों, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको गीत नए नवेले।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नमस्कार प्रोग्राम में, जो कि है जानकारियों से भरा प्रोग्राम। और इसी के साथ भी हम आपको सुनवाते हैं नए नवेले गीत और साथ ही आपके साथ शेयर करते हैं कुछ प्रेरक प्रसंग। दोस्तों, आज का जो प्रेरक प्रसंग है वो है मेहनत का दीपक। दोस्तों, जो दादी नानियाँ हमें कहानी सुनाती हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, हमें एक सही दिशा देती हैं। तो क्यों ना एक कहानी आपके साथ साझा की जाए। तो हम आपके लिए लाए हैं मेहनत का दीपक। दोस्तों, इस कहानी में ऐसा होता है कि एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में थोड़ा सामान्य सा था। जब भी परीक्षा होती उसके कुछ दोस्त उससे अच्छे अंक लाते। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा कि वो कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। एक दिन वो बहुत निराश होकर गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक के पास गया और उनसे बोला कि गुरुजी, मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन फिर भी सबसे पीछे रह जाता हूँ। तो गुरुजी उसे अपने घर के आंगन में ले गए। वहाँ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि यह छोटा सा दीपक पूरे गाँव को रोशन कर सकता है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुजी, ये तो केवल अपने आसपास ही प्रकाश देता है। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले,
4: लेकिन यह दीपक अपनी पूरी क्षमता से प्रकाश दे रहा है। यदि गांव का हर घर एक एक दीपक जला दे तो पूरा गांव रोशन हो जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा, सफलता भी ऐसी ही होती है, दूसरों से तुलना करने के बजाय हर दिन अपनी पूरी क्षमता से मेहनत करो। छोटी छोटी प्रगति ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, अर्जुन ने गुरुजी की बात गांठ बांध ली। उसने रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसके अंक बढ़ने लगे और कुछ ही वर्षों बाद वह एक सफल अधिकारी बन गया। तो मित्रों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें। लगातार की गई छोटी छोटी मेहनत ही बड़ी सफलता का आधार बनती है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और दिन प्रतिदिन की मेहनत से सफलता मिलती है। तो अब इसी बात को आप भी अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए और हमेशा मेहनत की ओर कदम बढ़ाइए। और अब चलते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

श्रोताओं, अभी एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से हमने यह सीखा कि दिन प्रतिदिन की मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन यदि उसमें कोई मुश्किलें आए तो आप डरना मत, क्योंकि मुश्किलें आए तो कभी मत डर जाना, साहस रखना, उनसे निडरता से लड़ जाना, बस विश्वास रखना अपने हृदय में हमेशा, और मेहनत से संसार में अपना नाम कमाना। तो मेहनत ही सफलता की

दोस्तों, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रयास, छोटे छोटे प्रयास जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं एक बड़ी सफलता पाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, वे भले ही छोटी होती हैं लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों की का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। इसीलिए आप प्रयास कीजिए, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, वो आपकी सफलता का एक बड़ा कारण ज़रूर बनेगा।

0: हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर इस समय सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा, आज जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स समूह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब समय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि भारतीय उत्पादों और ब्रांडों को वैश्विक पहचान दिलाने का है। कल नई दिल्ली में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की गुणवत्ता, नवाचार और क्षमता को दुनिया के हर बाजार तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। श्री सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न राज्य और वस्त्र क्षेत्र के सभी धारक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये गति और तेज होगी। केंद्र, राज्य, जिले और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे।
2: सिल्क बोर्ड 26,000 मेट्रिक टन पर 2014 में प्रोडक्शन साइज था, अभी 42,000 से ज्यादा है। आने वाले दिन में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। फैब्रिकेटर से भी कहूंगा, एक लाइन तुम अपने ब्रांड का भले उस नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू करें, जिससे इंडिया का ब्रांडिंग भी हो।
1: वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात को 37 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से इसका शुभारंभ करेंगे। पशुपालन विभाग ने बताया कि ये वायरस मक्खी, मच्छर और किलनियों के जरिए फैलता है। विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-2023 में इस बीमारी के कारण राज्य में लगभग 76,000 गौवंश प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बम्बाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भांकरोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जेडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यों को गति देने के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर और मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व देने के लिए स्वामित्व कार्ड भी बांटे जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सरकार इसकी लगातार निगरानी रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाने या ईंधन टैंक के पास जमा होने के वीडियो पूरी तरह से झूठे हैं। E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन का बीमा खत्म होने का दावा भी गलत पाया गया है। सरकार के अनुसार अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में यह व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है। इस कार्यक्रम से देश में कच्चे तेल की आयात में कमी आई है और 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए विभाग ने विशेष एडवाइजर जारी की है। किसानों से खेतों और मंडियों में खुले में रखी पकी हुई फसलों और अनाज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखने की अपील की गई है। रेलवे ने यात्री अनुशासन को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये किया गया है। रेलवे बोर्ड आदेश के अनुसार 20 जून से देशभर में तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। जयपुर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में खतरनाक और प्रतिबंधित सामान ले जाने के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। पटाखे, गैस सिलेंडर या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा किए जाने पर पूरी यात्रा का किराया और कम से कम 500 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 और 3 जुलाई को होंगे। सहायक आचार्य इतिहास और पुस्तकालय अध्यक्ष के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई तक चलेंगे। सहायक आचार्य संस्कृत के लिए 6 से 16 जुलाई और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के अंतिम चरण के इंटरव्यू 6 से 10 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी के लिए सहायक आचार्य के साक्षात्कार 10 जुलाई को होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया।

प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा, आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। मित्रों, आज है 24 जून और 24 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है और कूटनीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।
1: जी दोस्तों, महिलाएं विश्व भर में शांति स्थापना, संघर्ष समाधान, मानवाधिकारों की रक्षा और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर भी कूटनीति के उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है और इसी तरफ ध्यान गया यूनाइटेड नेशंस का और उन्होंने इस दिवस को मनाना शुरू किया दोस्तों, ताकि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान दिया जा सके और उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों, जब महिलाएं कूटनीति में समान रूप से भाग लेती हैं तो विश्व में शांति, विकास और सहयोग की संभावनाएं और अधिक मजबूत होती हैं। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं की उस महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो वे देशों के बीच संबंध मजबूत करने, शांति स्थापित करने और वैश्विक समस्याओं के समाधान में निभाती हैं। दोस्तों, क्या है कूटनीति? कूटनीति वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश आपसी बातचीत, समझौते और सहयोग के जरिए अपने संबंधों को बेहतर बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान खोजते हैं और इस कार्य में राजदूत, विदेश नीति विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2022 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की स्थापना की गई थी। और मित्रों, यह दिन याद दिलाता है कि कूटनीति केवल पुरुषों का कार्यक्षेत्र नहीं रहा है और इसमें महिलाओं की मौजूदगी वैश्विक प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है।

0: दोस्तों आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं कि आज के दिन दिन में क्या क्या खास है, आज के दिन क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1564 की बात करते हैं। आज ही के दिन भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद हुई थी।
1: वर्ष 1793 में आज ही के दिन फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिकन संविधान अपनाया था। मित्रों
0: 1963 में आज ही के दिन डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की थी।
1: साल 1974 और दिन था आज का। भारतीय टीम लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ केवल 42 रन पर सिमट गई। यह टेस्ट में भारत का न्यूनतम स्कोर है और वह टेस्ट मैच पारी और अपने 285 रन से उसमें हार गया था।
0: दोस्तों 2010 में आज ही के दिन विंबलडन में टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटे और 5 मिनट तक चला था। ये ऐतिहासिक मैच अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस माहूत के बीच हुआ था।
1: साल 1983 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड ने अंतरिक्ष में 6 दिन बिताकर पृथ्वी वापस आई थी। टेनिस के पूर्व खिलाड़ी रह चुकी राइड ने इस यात्रा में फ्लाइंग इंजीनियर के रूप में काम किया। उन्होंने 50 फुट लंबी एक यांत्रिक बाह को डिजाइन और संभालने का काम भी किया। इस यांत्रिक बाह का काम उपग्रहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचना था ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। इतिहास की बातें और भी करेंगे, पहले सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको आज के सेगमेंट के बारे में। आज का हमारा सेगमेंट है इतिहास में आज मल्हार। दोस्तों, हम बात करेंगे आज मल्हार के बारे में। छत्तीसगढ़ में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगरी मल्हार अपनी समृद्ध प्राचीन विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ये बिलासपुर जिले में स्थित है और यहाँ शैव, जैन और बौद्ध धर्म के प्राचीन साक्ष्य, मूर्तियां और दुर्लभ कलाकृतियां मिली हैं। दोस्तों, यहाँ का पुरातात्विक वैभव इसलिए इतिहास जो है वो इतिहास प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और मल्हार की जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक संपदा है उसका विस्तृत विवरण भारत कोश में भी उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ के मुख्य आकर्षणों की अगर जानकारी देखें तो यहाँ पर मौर्य, सातवाहन, कुषाण और गुप्त वंश के शासनकाल का एक प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र मल्हार रहा है। प्रमुख मंदिर और स्मारक जो है वो यहाँ प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर है और प्राचीन विष्णु मंदिर भी यहाँ का प्रमुख है, जो कि उत्कृष्ट मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हैं। और संग्रहालय जो यहाँ पर स्थित है वो है एक स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय है, जो कि जहाँ पर खुदाई में बहुत ही दुर्लभ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो अभी तक सहज कर रखे गए हैं।
4: श्रोताओं, प्राचीन नगर मल्हार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मस्तूरी से 14 किलोमीटर दूर है। प्राचीन काल में मल्हार महत्वपूर्ण नगर रहा होगा। इस नगर को राजधानी का दर्जा प्राप्त था या न था, इस पर तो विभिन्न मत है, लेकिन इस नगर का जो पुरातत्व संपदा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस नगर का उत्खनन प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के ऐसे शोध में पता चला, जिसमें प्रतिमाएं, विभिन्न संरचनाएं, सिक्के, पॉटरी, शिलालेख एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इनके आधार पर आकलन किया गया कि इस स्थान से 5 ऐतिहासिक कालखंडों के प्रमाण मिले हैं और यह नगर जो पहले आबाद रहा होगा, अब यह टीले के रूप में जो प्राप्त हुआ, इसमें जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का यह मंदिर प्राप्त हुआ है, इस शिवालय का निर्माण सोमवंशी शासकों ने कराया था। मंदिर के समीप ही प्रांगण में 2 बड़ी प्रतिमाओं के शीर्ष भाग रखे हुए हैं। विशालता देखते हुए ग्रामीण जनों ने महाभारत कालीन भीमा कीचक के रूप में इसकी पहचान की है। मंदिर के द्वार पट पर शिव के गणों की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। मुख्य द्वार पर शाखा पर परिचारिकाएं स्थापित है। द्वार पर किए गए बेलबूटे के अलंकरण देखकर सिरपुर के तिवर देव विहार का स्मरण हो जाता है। मंदिर की भित्तियों में प्रतिमाएं लगाई गई हैं और मंदिर के निर्माण में बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर की भित्तियों पर पशु पक्षियों, यक्ष, दक्षिणी गंधर्व, कीर्तिमुख, भारवाग आदि प्रतिमाएं भी बहुत ही अच्छे से और बारीकी से उकेरी गई है। द्वार पर स्थापित नदी देवियों के वस्त्र अलंकरण भी बहुत ही मनमोहक हैं, जिसे शिल्पकार ने अपने कार्य को बहुत ही महीनता से अंजाम दिया है। तो कुल मिलाकर मल्हार का छत्तीसगढ़ की पुरातत्व धरोहर के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मित्रों, जब भी आपको समय मिले जरूर इस स्थान का भ्रमण करें।

0: दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के काम की बात। दोस्तों वर्तमान जीवन शैली में अधिकतर लोगों में आजकल एक आम समस्या देखी गई है और वो है एड़ियों के दर्द की समस्या। दोस्तों ये समस्या ज़्यादा देर तक खड़े रहने और कार्य करने की वजह से एक आम समस्या सी हो गई है और महिलाओं में ज़्यादातर समय खड़े खड़े ही सारे कार्य करती हैं महिलाएँ, तो ये उनमें समस्या ज़्यादातर देखी गई है। लेकिन पुरुषों में भी ये समस्या देखी गई है क्योंकि ऐसे जो पुरुष जो कार्य करते हैं जहाँ पर उनको कार्यस्थल पर अधिक देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उनमें भी ये समस्या अब आम हो गई है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या है इसके कारण और हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं।
1: दोस्तों एड़ी का दर्द जिसे हम हील पेन कहते हैं, इसका एक प्रमुख कारण प्लांटर फेशियाइटिस होता है जिसमें पैर के तलवे की उत्तक पट्टी में सूजन आ जाती है। लंबे समय तक खड़े रहना, अधिक चलना या दौड़ना, मोटापा, गलत आकार के जूते पहनना, बढ़ती उम्र, पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आदि ये इसके प्रमुख कारण हैं। साथ ही सुबह उठते समय एड़ी में तेज दर्द या चलने या खड़े होने पर दर्द का बढ़ना, एड़ी में सूजन या अकड़न का होना, ये इसके लक्षण हैं।
0: दोस्तों एक आम समस्या होती जा रही है और इस समस्या से निपटने के लिए कोई दवाई हमारे लिए सहायक नहीं होगी क्योंकि दवाई का असर जो होता है वो कुछ देर के लिए होता है। इसके लिए हमें यही है कि बचाव ही उपाय है। तो बचाव क्या हो सकता है कि आप आरामदायक और सही आकार के जूते पहने, लंबे समय तक लगातार खड़े रहने से बचें, बीच बीच में थोड़े से छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, बैठकर कार्य कीजिए, उसके बाद में आप अपने वजन को नियंत्रित रखिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अपने, क्योंकि हमारे बॉडी का ज़्यादातर वेट जो होता है वो पैर ही लेते हैं, पैर ही सहन करते हैं, तो आप अपने बॉडी का वेट जो है वो नियंत्रित रखिए। उसके अलावा आप अपने पैरों को नियमित स्ट्रेचिंग कीजिए, व्यायाम कीजिए और जब दर्द ज़्यादा हो तब आप थोड़ी देर बैठ जाइए। इसके अलावा जो है आवश्यकता पड़ने पर आप एड़ी के लिए कुशन या सॉफ्ट सोल का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये जो उपाय है ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है कि आप सॉफ्ट कुशन वाले सॉफ्ट एड़ी जो सोल होता है वो ऐसे चप्पल पहने और उसमें आपको देखा जाएगा कि उसमें सबसे ज़्यादा आराम आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमने भी टेस्ट एंड ट्राइड है और हमें भी इससे इसमें बहुत लाभ मिला है। तो ये हमने एक देखा है कि ये सबसे कारगर उपाय है जो हमें आराम देता है। तो ये थी हमारे आज के काम की बात। होपफुल आपको पसंद आई होगी और आपके भी काम की बात साबित हुई होगी।

राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। दूसरे चरण के प्रमुख पद्म पुरस्कार विजेताओं में भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और उनके अभिनेता और साथ ही अभिनेता आर माधवन को सिनेमा और खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही दिग्गज मलयालम अभिनेता ममूटी और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से नवाजा गया। इस तरह इस वर्ष यह 2026 में पद्म पुरस्कारों का दूसरा चरण था। इसके पहले चरण में 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया था। तो मित्रों, ये थी आज की खास बात। उठे सबके कदम।

0: इसके पहले चरण में 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया था। तो मित्रों, ये थी आज की खास बात।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम।

0: अंजलि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही दोस्तों वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत संकाय के डीन भी रहे और संगीत शिक्षा को नई दिशा दी, और इसी के लिए संगीत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और साथ ही संगीत नाटक अकादमी जैसे पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए।
1: इसी के साथ ही जयंती के इस अवसर पर हम आज याद करते हैं प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े को, जिनका जन्म 24 जून 1863 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें इतिहासाचार्य राजवाड़े के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत और व्याकरण के वे प्रकांड पंडित थे, जिसका प्रमाण उनकी सुप्रसिद्ध कृतियां राजवाड़े धातुकोश तथा संस्कृत भाषेचा उलगड़ा आदि में दिखाई देता है। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने भारतीय विवाह संस्था का इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में की थी। उनके व्यापक अध्ययन और चिंतन की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मित्रों, आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के जयंती विशेष में। दोस्तों पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक, संगीतज्ञ, शिक्षक और संगीत शास्त्री थे। आज के दिन 24 जून को यानी कि 1897 में गुजरात के खंबात में के गांव में जन्मे ओंकारनाथ जी ग्वालियर घराने की परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि गायक थे। दोस्तों उन्होंने महान संगीताचार्य विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी भावपूर्ण और प्रभावशाली गायकी के लिए वे प्रसिद्ध रहे। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को देश विदेश में लोकप्रिय बनाया और इसी के साथ ही उन्होंने संगीत पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिनमें संगीत

0: दोस्तों, आज जयंती है मास्टर तारा सिंह की, जो कि भारत के प्रमुख सिख नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। 24 जून 1885 को रावलपिंडी में जन्मे तारा सिंह का मूल नाम नानक चंद था और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। सिख समुदाय के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। इसके साथ ही उन्होंने गुरुद्वारों के प्रबंधन को जनता के हाथों में लाने के लिए चलाए गए गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, भारत विभाजन के समय भी उनकी भूमिका मुख्य रही। भारत के विभाजन के दौरान उन्होंने सिख समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास किए और विभाजन के बाद वे पंजाब और सिख समाज के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। दोस्तों, मास्टर तारा सिंह ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और धार्मिक जागरूकता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए और वे सिख समुदाय की एकता और उत्थान के लिए जीवन भर कार्यरत रहे।
1: श्रोताओं, जयंती के बाद हम याद करते हैं उन महापुरुषों को जो आज के दिन इस दुनिया से विदा हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंद भारतीय सैनिकों में से एक दरबान सिंह नेगी, जिन्हें ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस मिला था, उनका आज ही के दिन निधन हुआ। दरबान सिंह नेगी करीब 33 साल के थे और उन्होंने 39वीं गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर अपनी भूमिका निभाई। 23-24 नवंबर 1914 को उनकी रेजिमेंट ने दुश्मन से फेस्टुबर्ट के करीब ब्रिटिश खंडकों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की। इस युद्ध के दौरान उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। साथ ही आज स्मृति दिवस मना रहे हैं हम भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी को, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1969 से 1974 तक यह पद संभाला। इसके अलावा वे देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। एक प्रमुख मजदूर नेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके योगदान के लिए उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

0: दोस्तों, आज ही के दिन हम स्मृति दिवस मना रहे हैं भारतीय लेखक और पत्रकार अवधानम सीतारमन का। साहित्यिक और सांस्कृतिक त्रैमासिक त्रिवेणी जैसे अंग्रेजी और तेलुगु प्रकाशनों में उन्होंने अपना स्वतंत्र योगदान दिया। साथ ही लंदन की पत्रिका द स्टूडियो में एक कला सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया।
1: दोस्तों, इसके साथ ही आज हम मना रहे हैं पुण्य तिथि रानी दुर्गावती की, जो कि भारत के इतिहास की महान वीरांगनाओं में से एक

वे गोंडवाना राज्य की रानी थीं और अपनी वीरता, कुशल शासन और मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए बलिदान के कारण आज भी सम्मानपूर्वक याद की जाती हैं। दोस्तों, पति की मृत्यु के बाद उनके पुत्र वीर नारायण बहुत छोटे थे, तो उन्होंने संरक्षिका के रूप में राज्य का शासन संभाला और उनके शासनकाल में गोंडवाना राज्य जो था वो बहुत समृद्ध हुआ और मजबूत प्रशासन बना। दुर्गावती को साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनकी स्मृति में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी खोला गया है और भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है।

श्रोताओं, ये प्रसिद्ध आरती लिखी थी पंडित श्रद्धाराम शर्मा ने, जिनका आज हम स्मरण दिवस मना रहे हैं। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के रूप में उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिली जो इन्हें इनके द्वारा लिखी गई अमर आरती ओम जय जगदीश हरे के कारण मिली। पंडित जी सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वाक्पटुता के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना एवं धार्मिक उत्साह जगाया, जिससे आगे चलकर आर्य समाज के लिए पहले से निर्मित एक उर्वर भूमि मिली। मित्रों,

0: दोस्तों आज के वर्ल्ड
1: फीफा वर्ल्ड कप
0: फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। कल के जो मैच में फ्रांस, नॉर्वे और अल्जीरिया जीते थे, और आज जो मैच खेले जाएंगे उनमें कोलंबिया वर्सेस कांगो, स्विट्जरलैंड वर्सेस कनाडा, बोस्निया वर्सेस हर्जेगोविना, मोरक्को वर्सेस हैती और स्कॉटलैंड वर्सेस ब्राजील के मैच आज खेले जाएंगे।
1: इसी के साथ श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हम अब इजाजत लेते हैं आपसे। और अब मीता मुल्तानी
0: और मैं मनीषा जोशी बोहरा, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 10 बज रहे हैं। आइए सुने लोक संगीत।

0: सूर्यनगरी चैनल के संग।
1: सावण
0: और कार्यक्रम में ये स्वर है अनुराधा कला का

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।
1: मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा

0: मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 11 बज रहे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं आ गले लग जा फिल्म का गीत। किशोर कुमार ने गीत को गाया है, साहिर लुधियानवी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
8: RBI कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग। इम्तिहान फिल्म का गीत कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

0: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग। और कार्यक्रम में ये गीत है तेजाब फिल्म से, अलका याग्निक और साथियों का गाया, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मी प्यारे का संगीत।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
2: कैसे?

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में। संतोष आनंद ने लिखे हैं गीत के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म संगीत में ये गीत लिया है डॉन फिल्म से। इस गीत को गाया है अलीसा चिन्हॉय और महालक्ष्मी निगम ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

श्रोताओं, लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आज हम आपको कुछ चुनिंदा लोक भजन सुनवा रहे हैं। अभी आपने सुना सतीश देहड़ा और साथियों को, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सच्चिदानंद महाराज का गाया ये लोक भजन।

से हजार री सतसंगत पल एक तो भी बराबर नहीं तुले सुखदेव मुनि कियो विवेक। अरे सुने सुने रे।

रामेश्वर लाल पंवार के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है सुगम संगीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में। आइए आपको ये गजल सुनवाते हैं हरिहरन की आवाज में। कलाम ताहिर फराज का है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
3: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में। आइए गुलाम अली की गाई ये गजल आपको सुनवाते हैं, कलाम मोहसिन नकवी का है।

और सामीन, यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, अशोक खोसला की आवाज़ में ये गज़ल। कलाम है डॉक्टर राही मासूम रज़ा का।

इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अधिकारियों के साथ पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में अधिकारियों ने रिफाइनरी से उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के नमूने प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करती ये महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी। साथ ही पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, केमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर राजस्थान को विनिर्माण और औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1500 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रॉमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं जेडीए नगर निगम स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से करेंगे। पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन

0: 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से लोगों की यात्रा आसान हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। बूंदी शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत गढ़ पैलेस में शहनाई वादन से हुई। इसके बाद गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। इस अवसर पर पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय सहायक जगदीश वर्मा ने बताया कि बूंदी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रानी जी की बावड़ी, सुख महल और 84 खंभों की छतरी पर पर्यटनों और आमजन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदीवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने बूंदी को राजस्थान की अतुल्य सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गौरव का अनूठा प्रतीक बताया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थी और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस का असर बरकरार है। राजधानी जयपुर में आज सुबह कई जगह हल्की बरसात हुई। भरतपुर में भी सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत। कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम आपको एक भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं। प्रधान वैज्ञानिक ऋतु मावर से दिनेश राणेजा की बातचीत। विषय है मृदा जनित रोगों से फसल की सुरक्षा करें।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाइया खेती बाड़ी रा काम का जी का है अपने हरमेश चाले जे दलहनी फसलों रो उत्पादन भी लेवे है साथे अनाज री फसल भी लेवे है और साथे साथे बागवानी भी किसान भाई करिया करे। खेत बचाओ अभियान के तहत आज आपने जानकारी दिलावा मृदा जनित रोगों से फसल की सुरक्षा करें। आज कार्यक्रम में पधारिया है डॉक्टर रितु मावर, आप प्रधान वैज्ञानिक है पौध व्याधि विभाग काजरी जोधपुर मैंने। राम राम सा।
1: राम राम, घनी घनी राम राम किसान भाइया ने।
0: रितु जी और जी को खेत बचाओ अभियान चल रियो है, 1 जून से शुरू हुई हो और 30 जून तक चलेला
1: जी,
0: वही जन सा?
1: बिल्कुल सा वही जे।
0: किसान भाई जो खेती बाड़ी का कामकाज तो करी जे और साथ है खेती बाड़ी का कामकाज करे तो देखो कई अबगाया आवे, कई बीमारियां भी लागे, कई कीट भी वे वाने लागे कि भाई जिकी अच्छी जानकारी मिल जावे तो किसी दवाया काम में लेना किन तरह से काम काज हो जा और खेती मायने जो नुकसान है वो नहीं हो पावे। सगलो से पहला बात है कि मिट्टी रो जिको स्वास्थ्य होया करे, इनरो खेती बाड़ी में कई महत्व होया करे।
1: सर आप बहुत अच्छी शुरुआत करी हो, आप मिट्टी की बात करिया करे हैं तो सबू पहले ओइज बात करें कि अपनी मिट्टी कैसी होनी चाहिए।
0: हाँ।
1: है मिट्टी रो स्वास्थ्य, तो मिट्टी रो स्वास्थ्य वास्ते ओ है कि मिट्टी री तो पानी पोषक तत्व जो भी मिलिया करे है मिट्टी में सबू इम्पोर्टेंट है सूक्ष्म जीव। अपना सूक्ष्म जीव तो हम जो भी बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की वो मिट्टी में कैसे बढ़ाए जाएं। राजस्थान में क्या है कि बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी में सूक्ष्म जीवारी क्षमता वे वह कम वे
0: नमी कम
1: वे। हाँ। तो उन्हें वास्ते आपा किकर उन्हें बढ़ा सका और ताकि वह रोग भी कम लगे, प्रकोप कम करने वास्ते आपा किस तरह मिट्टी ने बढ़ा सका, तो जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ जावे वह मिट्टी स्वस्थ हो जाए।
0: सही बात बतीसा के भाई किसान भाई ने

0: पड़ जाए कि भाई मिट्टी अच्छी वेला और साथ ही जिका छोटा छोटा जिका आप सूक्ष्म जीव बताया हो, जीवाणु बताया हो, जिका खेती बाड़ी वास्ते बहुत लाभदायक हुआ करे। हमें जो बात आवे कि आज की मिट्टी है इन महीने भांत भांतरा जिका रोग लाग जावे, किसा किसा रोग है जिको इन मिट्टी महीने लाग गया करे?
1: यूं ऐसा मिट्टी में कई तरह का रोग लग गया करे,
0: हाँ
1: पर जो सबूत ज्यादा नुकसान करे है वह है फफूंद और जीवाणु जो लग गया करे रोग।
0: अच्छा
1: कई है कि अपना मिट्टी में जद आ रोग लग गया करे है तो
0: हाँ
1: किसान भाई कई करा कि पहले देखा नहीं कि भाई मिट्टी में कुसा रोग है, ले ने सीधा दवाई डाल देवे।
0: तो इन रोगों को कोई कारण वे लगनो?
1: हाँ, और इस तो बात है
0: हाँ
1: जरूरी कि रोग किकर लाग गया, तो रोग जब लाग गया करे है तो उन्हें पता चल जावे कि आ जो रोग है और मिट्टी जनित है। हवा में भी होवे कीटाणु तो है
0: पानी में
1: नहीं,
0: भी होवे।
1: पानी में भी वे, पर
0: हाँ
1: आपा बात करिया रे मिट्टी री,
0: हाँ
1: तो मिट्टी में जो रोग लाग गया करे वे फफूंद हानिकारक जीवाणु लाग गया करे। तो उन्हीं पहचान कही है कि किसान भे जब आपा फसलें लेवा करे है तो उमे जो फसल रा पौधा है जो मेन पौधा उमे कही है कि जड़ हाथों आ जावे, किसान
0: अच्छा
1: भाई जब हाथ लगावे तो
0: हाँ
1: ठा पड़ जावे कि ओ पौधा में रोग लाग गयो है, तो वो हाथों आ जावे, तो वह ठा पड़ जावे कि आ रोग मिट्टी हुए है। तो क्योंकि जो हवाओं रोग लगे करे उमे कही है कि पौधा हाथ में नहीं आ सके, आसानियों
0: मजबूत बने डर रहे।
1: मजबूत बने उड़ रहे,
0: हाँ
1: लेकिन जो मिट्टियों लागे करे उमे पौधा आसानियों निकल जावे। रोग है वह है जड़ गलन रोग,
0: हाँ जड़ा गलगी।
1: रोग जो लागे करे जड़ा में लागे करे, तो जड़ा काली पड़ जावे सड़ जावे, और तो है कारण मिट्टी में रोग लागन सु पौधा जड़ काली पड़न वालो।
0: तो एक आप जी वो जड़ गलन बतायो, तो
1: जी
0: साथे दूसरा रोग भी है,
1: हाँ,
0: किसा
1: जिस
0: है?
1: आप अगर रबी दी फसला की बात करा तो जीरा में एक रोग लागिया करे विल्ट, जिना
0: हाँ
1: में आप साइंटिफिक भाषा में विल्ट बोलते हैं, और यूं किसान भाई उकटा कहवे उन्हें,
0: हाँ
1: तो उन्हें कहिए कि जो फसला जीरा रही है वह बिल्कुल लागे घेरा घेरा बन जावे जगह जगह, उन्हें सबू पहचान है घेरा बन जावे जगह पूरा खेत माते जटे जटे घेरा बन गया, मतलब कि आ मिट्टी खराब हो चुकी है, इनमें पूरा तरह रोग लाग गयो है और विल्ट आई गई है, और पहचान है।
0: और साथे किसान भाई दिमाग में आवे कि भाई इन रोगों की पहचान करा, तो पहचान रा जी का किन तरह हम कर सके? हाँ
1: पीलो पड़ जावे, हाथों आ जावे बिल्कुल, और सबू पहली पहचान है पौधा रे बिल्कुल हाथ में आनो, और सबू पहली पहचान है। आपा मिट्टी में सही उर्वरक रो उपयोग करा नी तो मिट्टी वे अच्छी रोग कम लागया करे। अगर आपा मिट्टी रा स्वास्थ्य जैविक पदार्थों बढ़ा देवा, जैविक पदार्थ री जब भी कमी वेनी तब
0: हाँ
1: आ मिट्टी री क्षमता कमजोर जावे, तो आपने मिट्टी री क्षमता बढ़ानी है।
0: ऋतु जी एजी का रोग लाग जावे, किसान भाई इन रोगारी जी की रोकथाम है वह किन तरह से कर सके? हाँ
1: रोगारी रोकथाम के वास्ते पहली जो आप बता दिया फसल चक्र, और तो अपनाना ही अपनाना है,
0: अदल बदल अंद खेती करो।
1: अदल बदल एक खेत में वाइज फसल पाछी नहीं लेनी है जो आप लारी साल ली, तो फसल चक्र अपनाना है। दूजो आपने सड़ी उड़ी गोबर री खाद काम में लेनी है,
0: अच्छा
1: ठीक है, और तीजा है मित्र फफूंद और मित्र जीवाणु। आप बात कर रहा है हानिकारक फफूंद जो रोग लग गया करे, दूजी बात कर रहा है मित्र फफूंद और मित्र जीवाणु किकर आपा बढ़ा सका, तो उन वास्ते गोबर री सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद दो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है।
0: सही कहे सो आप। साथ जीव आप मित्र जीवाणु की बात करी, तो मैंने बाता बाता में याद आएगा कि भाई अपने काजरी में भी अड़ा जीवाणु मित्र जीवाणु जी का उपलब्ध है आप रहे।
1: बिल्कुल सा, काजरी 10 सालों काजरी ने बना रखा है मित्र फफूंद और मित्र जीवाणु।
0: हाँ
1: अपा मित्र फफूंद की बात करें तो ट्राइकोडर्मा नाम आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, पहले तो किसान भैया कौन ही जानता ट्राइकोडर्मा, ये
0: हाँ
1: है मित्र फफूंद, तो काजरी यूं पेटेंट भी लियोड़ा है इना मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा का, जा आपा बोलिया करे मरुसेना, काजरी नाम दियो है ना मरुसेना, अगर इन सेना ने काम में लेवा तो मिट्टी री पोषक तत्व बढ़िया करे है, पौधा री बढ़वार वे है, किसान भैया जितना भी आवे नी मारकने और इच
0: हाँ
1: कहे पौधा री बढ़वार की कवे मैडम जी,
0: हाँ
1: तो पौधा री बढ़वार रे वास्ते आपा अगर मित्र फफूंद और ट्राइकोडर्मा रा यूज करे हवल गोबर री खाद में मिलान है बहुत ज्यादा कार्यकारी है, और इन्हें किसान भाई आप काम में ले सका।
0: जैविक जी का आप मित्र जीवाणु उपलब्ध काम में लेवे किसान भाई, तो जी को पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रह सके। और
1: बिल्कुल
0: जी हमें बात आवे कई दाण आप सुना के भाई नीम री खड़ी है, सरसों री खड़ी है, जड़ा जी का कार्बनिक पदार्थ है, किन तरह से मदद कर सके?
1: आपा नीम री खली और सरसों की खली भी कार्बनिक पदार्थ में बहुत उपयोगी हुआ करे,
0: हाँ
1: इन्हें कहिए कि सूक्ष्म जीवों की संख्या आप बढ़ाव्या करे। आपा अगर नीम री खल काम में लेवा तो रोग जिका फैलान वाला है नी वा उनी वृद्धि कम वे, क्योंकि इनमें कई टॉक्सिक चीजा हुआ करे जो आपा जब मिट्टी मिलावे तो उन्हें गैस निकलिया करे,
0: अच्छा
1: तो उन्हों कही है कि आ जो हानिकारक फफूंद है वह मर जाए करे और मिट्टी री

0: उर्वरक क्षमता बढ़ जावे, कार्बनरी और पदार्थी मात्रा बढ़ावया करे है।
1: और साथ साथ आप बात करा के सेगली जी की आप जानकारी किसान भाई ने दी है, वो बरसात सीजन है, मौसम है, किसान भाई खेती बाड़ी करेला भात भातरी जी की फसला है खेता में लेवेला, तो हमें बात आवे के भाई जी को बीज काम में लेवे, बीज रो उपचार करनो खेती बाड़ी में कितरो आवश्यक है।
0: जो भी आप बीज लिया करे है उन उपचार सबू पहले किसान भाई नो करनो चाहिए। बीज रो उपचार कर अगर आप कर लेवा तो बीज में भी रोग लग गया करे है।
1: हाँ,
0: कभी कभी बीज भी खराब हुए तो उन्हू भी अगर मिट्टी बढ़िया है लेकिन बीज चोखो को नहीं और बीज रो उपचार नहीं करी उड़ा है और ज्यादा बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहे
1: और फसला भी वह को नहीं उगे। हाँ
0: बिल्कुल, तो अपने बीज रो उपचार भी बहुत जरूरी है और बीज रो उपचार भी कई तरह हुए करे।
1: हाँ,
0: एक तो आपा करिया करे केमिकलू।
1: हाँ
0: लेकिन अगला ही लोग केमिकल यूज कर दिया जदी तो आपा कह रिया खेत बचाओ
1: हाँ
0: है नी,
1: रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करता
0: कम
1: था
0: करो
1: खेती करनी है।
0: तो जदी मैं कह रहा हूँ मित्र फपूंद करो, जिका
1: हाँ
0: काजरी में मिल रहा है ट्राइकोडर्मा उन्हू आप बीज उपचार करो, उन्हीं मात्रा भी आप निर्धारित किए उड़ा है कि उन्हीं मात्रा 4 ग्राम मरुसेना ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज रे वास्ते उपचार रे वास्ते बिल्कुल सही है।
1: खास तौर से आपनो जी को क्षेत्र आथनो राजस्थान है और शुष्क भी है अर्ध शुष्क भी है, अटे बारिश भी देखो आगे लारे हुए कदी हली उजा कदी कम उजा, जी का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र मैंने अपना किसान भाई रहे है खेती बाड़ी करे है उन्होंने आप कई संदेश देनी चाहो।
0: देखो साहब उन्हें तो मैं ओच कहना चाहूँ कि आप मिट्टी री नियमित जांच कराओ,
1: एक सालू करावे
0: एक
1: दो सालू
0: साल
1: करावे।
0: एक जांच करा लिया आप है सॉइल हेल्थ कार्ड बना लिया,
1: हाँ
0: लेकिन और नहीं सोचना चाहिए कि एक साल सॉइल हेल्थ कार्ड बन गया पाछा नहीं बनाओ, एड़ो नहीं करना है।
1: हाँ
0: वह पाछो 2 साल पछे पाछो बनाना है या 3 साल पछे, 3 साल तो आपने मतलब टाइम देना है, पछे 3 साल पछे पाछो मृदा कार्ड तो आपने बनाना ही बनाना है।
1: सही कहे सर। और किसान वास्ते आप हलता हलता कहीं कहनी चाहो कहीं बुलाऊ देनी चाहो।
0: मैं तो ओइच कहनी चाहूँ सा कि अपना मूल मंत्र रखना चाहिए किसाना ने
1: हाँ
0: कि स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान।
1: सही बात बताई सा। डॉक्टर रितु मावर जी आप कार्यक्रम में पधारिया, मृदा जनित रोगों से फसल की सुरक्षा किन तरह किसान भाई कर सके जानकारी आप दे रही, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
1: कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है दिनेश राणे जाने सीख दे रहो। राम राम।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। आज आपने सुनी एक भेंटवार्ता प्रधान वैज्ञानिक काजरी जोधपुर ऋतु मावर से दिनेश राणेजा की भेंटवार्ता, विषय था मृदा जनित रोगों से फसल की सुरक्षा कैसे करें, प्रस्तुति थी राजेश लामरोड़ की। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। दिन के 1:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आधी आबादी का पसंदीदा कार्यक्रम गणगौर।

0: छुट्टियां में नानी रे घरे खूब लाटकोट कर लिया, मतीरा काकड़िया भी खा लिया और खूब धमा चौकड़ी भी मचा ली। पर अबे भगत आके है पाछो बस्तो सजावन रो, नुवी को प्यारी महक रो और सका सहेली सु मिलने रो।
1: बिल्कुल, और आज रे इन सुंदर यादा और ज्ञान रे उजास आगे आप आज रे इन पोथी पाटी री बाता विशेष गणगौर कार्यक्रम री शुरुआत करा, जिन्हें लेर हाजिर है आपकी दोस्त सखियां कोमल राठौर
0: और पूनम देवड़ा।
1: स्वागत है सगला छोटा मोटा भाई बहना रो, बाल गोपाला रो और सयाना माता पिता रो।
0: तो स्वीकार करो माणा कोट बरिया राम राम, और स्वागत है आप सगला रो
1: कार्यक्रम
0: गणगौर में।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: कड़कती बढ़ती गर्मी और लंबी छुट्टियां बाद जब पाछी स्कूल खुले तो बारी रौनक देखने लायक होया करे। सुबह सुबह उठने रो आड़स पर नवा बस्ता, नई यूनिफॉर्म और नवी कॉपिया रो चाव टाबरा रे चेहरे माते जी को साफ देखने मिलिया करे।
2: बिल्कुल। और सुनसान पड़ी स्कूल री गलियां और कमरा पाछा गुंजरने लाग जावे और टाबरिया जका एक दूजा सु घना दिना बाद मिले तो वारी जकी खुशी है बाबी पार नहीं रहे।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल। और छुट्टिया री बात करनी, इकट्ठे घूमने गया, दादा दादी रे घरे की तीक धमा चौकड़ी मचाई, ये सगली बात स्कूल रे माहौल ने पाछो जीवंत बना दिया करे।
2: बिल्कुल बना देवे। और जका गुरु हुए वारो तो है ते और जकी पाछी पढ़ाई है बस शुरू कर बारो तरीको टाबरा में जको जोश है वो नयो जोश भर दिया करे और आज की रौनक है वा स्कूल री आत्मा ने पाछी जगा देवे।
1: सांच मानो तो टाबर बिना स्कूल एक बिल्कुल ढांचो मात्र ही है, पर जब टावरिया पाछा आवे तो स्कूल साचो मिंदर बन जाया करे।
2: बिल्कुल। अपने अटे केबत भी है कि पोथी पकड़िया पंडित कोनी होवे, मतलब किताब हाथ में पकड़ने सु ही नहीं बल्कि ज्ञान ने जीवन में उतारनो भी जरूरी हुआ करे। इनरे वास्ते आप नया सत्र रे मायने किताब ने हाथ में पकड़ो, ज्ञान ने आप जीवन में इन तरीका से उतारो कि वो ज्ञान हमेशा रे वास्ते आपरे मायने बस जावे।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल। एक और कहावत भी है कि माया अंटरी और विद्या कंट्री, यानी गांठ रो पैसो अड़ी रे मायने काम आया करे और कंठस्थ करियोड़ी विद्या है वा भी हमेशा अपने साथ रिया करे है। बाता रिया कड़ी तो आगे भी अपने चालती रहेला, पर आ चौकी सी बाता रे साथ ही सुनावा आ सखिया ने एक सुरीलो सो गीत।
2: बिल्कुल।

0: हाँ तो कोमल आप बात कर रहे हैं स्कूल री।
1: बिल्कुल।
0: तो स्कूल जब टाबर पहली बार जावे तो आजकल आप कई करा छोटा छोटा जब बच्चा ढंग से बोलनी शुरू को नहीं हो उन्हीं टाइम आप स्कूल डाल दा पढ़ना ही अड़ो अपने नहीं करना। जब टाबर 3 से 4 साल रो जावे अच्छे से आप रे मन री बात या जो बात है वो अपने समझा सके उन समय उन्हें स्कूल डालना। तो और पहले अपने प्ले ग्रुप रे मैंने डालना ताकि बच्चे उठनी बैठनी घुलनो मिलनो ये सब चीजें सीख जावे। 5-6 साल की उम्र जब हुए बच्चों पहली कक्षा रे मैंने बैठ सके हैं। और सरकारी नियम हमारी बात करा तो उनरे मुझे भी 6 साल की उम्र जरूरी होया करे पहली कक्षा रे वास्ते।
1: बिल्कुल पूनम जी। और बच्चों जब पहली बार स्कूल जावे तो उन्हें घर से कई बातारी ट्रेनिंग भी जरूर देनी चाहिए क्योंकि आप ही सबसे पहले अपना बच्चा ने सिखा सका। तो पहली तो बात आ है कि टावरा ने जकी स्कूल है वीर नाम सुबह ने डराओ मती स्कूल री चौकी चौकी बात बताओ बांक मायने जो को चाव है वो जगाओ ताकि वे जाबा ती करे स्कूल और हर बराबर आपने जकी रफ्तार है विषय भी वो सीखे ताकि और जबरदस्ती भी बीरे साथे मत करो।
0: बिल्कुल सही क्यों कोमल। कई बार आप घर मायने टाबर थोड़ी सी बदमाशी करे तो आप डरा दा कि रुक थना बे स्कूल डालू ला जब तू सीध हो जावा। हाँ। और टाबर ने कुछ गरु शिक्षा देनी भी जरूरी है जन टाबर ने खुद रो नाम है माता पिता रो नाम है वो पूरा याद होना चाहिए। भूख प्यास अगर लागे तो वो बोलना सीखनो आना चाहिए कि भाई अभी ने भूख लगी है प्यास लगी या पचे उन्हें टॉयलेट जानो है आ ट्रेनिंग अपने घर से देनी चाहिए। खुद रो टिफिन है बोतल है वो खोल ले वो खानो जीन सके है हाथ धोना खुद रो नाक साफ करना ये चीजें भी अपने भी ने सिखानी चाहिए। और आपकी जो चीजें है जन बैग है जूता है रख रखाव है सही जगह पर रखनो ये बात भी ने आनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और जी की छोटी छोटी चीजें है वे भी अपने सिखानी चाहिए आप अपने स्तर पर भी सिखा सका जी रंग है कोई चीज रो आकार है भी रो ज्ञान 1 से 10 तक गिनती है हिंदी इंग्लिश रो जगह अक्सर हुई करे वाली छोटी मोटी पहचान हुई कोई कविता हुई और मिलर बांटनो धैर्य राखनो बड़ा रो आदर करनो ये सगड़ी चीजें जकी है टाबर ने घर से सीखनी चाहिए क्योंकि टाबर ने जकी पहली पाठशाला हुए वो उनारो घर हुए परिवार हुए और आपा केवा भी आके जकी पहली गुरु है उनारी माँ ही हुआ करे।
0: बिल्कुल। और बात करे विद्यारंभ संस्कार री तो आखर ज्ञान रिया पावन शुरुआत होया करे और अपनी संस्कृति रे मायने 16 संस्कार रो घणो महत्व है। इन 16 संस्कार मासुई जे एक है विद्यारंभ संस्कार इनरो सीधो मतलब है टाबर ने आखर ज्ञान और पढ़ाई लिखाई री शुरुआत करानी। जब टाबर 5 बरस रो हो जावे तो इन पावन कार्य ने करियो जाया करे है। और पुरानी मान्यता रे मुजब विद्या ने सबसे मोटो धन मान्यो गयो है। टाबर री बुद्धि और ज्ञान ने सही दिशा देवन सारू विद्यारंभ संस्कार घणो जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी तो वही है जणी तो अपन अठे चोखो मुहूर्त देकर पूनम जी इन संस्कार से जुड़ेड़ी रिवाजें हैं रीतियां हैं बैठे निभाई जावे। सबसे पहली तो टाबर ने नहलावे धुलावे नया कपड़ा पहनावे और भगवान गणेश जी रे सरस्वती माता रे और कुल देवता री जकी पूजा है वह करवार वारो आशीर्वाद लियो जावे। और जकी पार्टी हुए या थाली हुए बीरमाई ने रोली चावल सु ओम और स्वास्तिक हुए जको अपने अठे बनावे पचे जका गुरु है या पिता है या जको है वो टाबर री आंगली पकड़ और पेलो अक्सर लिखवावे जो काम है वो पूरा होवन रे पचे सब ने गुड़ लाडू या मिश्री बांट और सगला रो मीठो मुंडो करायो जावे।
0: बिल्कुल कोमल सही की। और आज ही भागदौड़ वाली जिंदगी में भले ही लोग टाबर ने सीधे स्कूल भेज देवे पर ओ संस्कार टाबर ने सिखावे कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी पावन सारू ही नहीं बल्कि एक चोखो और संस्कारी इंसान बनन सारू भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।

0: जब सूरज जी पहली रंग धरती माते आवे तो हर घर में एक न्यारी ही रौनक बिखर जाया करे। वह रौनक है टाबरारी स्कूल जाबारी तैयारी री। सुबह सुबह मामा अपने टाबरा ने लाडूडो बेटो कहने भगत वेगियो है जाया करे है। टाबर आखिया मलता मलता उठे है और घर में एक भागदौड़ शुरू हो जाया करे। कटे बस्तारी चिंता तो कटे धोती पोती ड्रेस री संभाल तो कटे रसोई सो आवती ताती ताती रोटिया महक। मारी आंगली पकड़ माथे तिलक लगाए जब टाबर हंसता मुड़कता स्कूल की तरफ पग बढ़ावे तो लागे जो साक्षात ज्ञान री गंगा उंडरे सागे चाल रही है। स्कूल रो वो रास्तो सिर्फ पढ़ाई रो नहीं है बल्कि एक सुथरे भविष्य रो रास्तो है और इन रास्ते में मार्गदर्शन करिया करे है अपना शिक्षक। तो आज स्कूल जाने री तैयारी सु जानकारी देवन सारू अपने सागे है शिका रिम्पा चक्रवर्ती। तो रिम्पा जी आप घने हे थरक सु स्वागत है जोधपुर आकाशवाणी केंद्र रे स्टूडियो में और हे प्रीत सु भरोड़ा राम राम।
1: आकाशवाणी की सभी टीम को और सुनने सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम।
0: तो सबसे पहले आप वही जाननी चाहवा कि नए सत्र रे महीने बच्चा जब स्कूल जावे तो व्यानो स्वागत करने वास्ते कहीं तैयार है स्कूल रे महीने करी जाया करे है।
1: जब बच्चा पहले दिन स्कूल के प्रवेश द्वार पर गुब्बारे रंगोली या मुस्कुराते हुए शिक्षक और स्वागत गतिविधियां देखता है तो उनकी घबराहट काफी हद तक कम हो जाती है। पिछले वर्ष मुझे याद है एक बच्ची पहले दिन बहुत संकोच में थी लेकिन वेलकम सॉन्ग और कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी छोटी छोटी पहले बच्चों के मन में स्कूल के प्रति सकारात्मक भावना और उत्साह पैदा करती है। एक शिक्षक और एक अभिभावक दोनों के रूप में मेरा मानना है कि बच्चों का पहला अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि शुरुआत खुशी उत्साह और आत्मीयता के साथ तो पूरा शैक्षणिक वर्ष भी अधिक सफल और आनंदमय बन जाता है।
2: बिल्कुल रिम्पा जी आप बहुत सही की हो घबराहट है जबकि हर बच्चा में रिया करे और आज की घबराहट है बा एडमिशन रे बगत माँ बाप में भी थोड़ी सी रिया करे वाने आपरे हिसाब सु जी टेम वाने चिंता रहे कि एडमिशन मतलब किकर हुई या हो जाए या फिर कहीं कोई परेशानी तो नहीं आवे तो वी टेम वाला माता पिता ने कौन सी खास बातों रो ध्यान रखना चाहिए।
1: देखिए एडमिशन के समय माता पिता को केवल स्कूल की बिल्डिंग या एकेडमिक रिजल्ट देखकर ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये भी जरूर देखना चाहिए कि स्कूल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैसा वातावरण प्रदान कर रहा है या फिर स्कूल की टीचिंग मेथोडोलॉजी शिक्षक की गुणवत्ता सुरक्षा व्यवस्था खेलकूद और को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ मूल्यों और लाइफ स्किल्स पर भी कितना ध्यान दिया जाता है। एक शिक्षक के रूप में मेरा मानना है कि हर बच्चा अलग होता है और इसलिए स्कूल का चयन उसकी रुचियों क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे की रुचि संगीत कला या खेल में अधिक है तो ऐसे स्कूल का चयन किया जाना चाहिए जहां इन क्षेत्रों को भी उचित महत्व दिया जाता है। और एक अभिभावक के रूप में अगर मैं सोचूं तो स्कूल और माता पिता के बीच अच्छा संवाद होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब विद्यालय और परिवार मिलकर बच्चे के विकास के लिए कार्य करते हैं तब उसके सीखने की यात्रा और अधिक सफल हो जाती है।

0: बिल्कुल। तो अपन ही अभी आप आगे बढ़ावा और आपसे पूछा
1: हाँ
0: कि छोटे बच्चों जब पहली बार स्कूल जावे तो वो अक्सर देखो बहुत ज्यादा रोया करे है, तो उन समय जो को माहौल है स्कूल रो वो किन प्रकार बनावे कि वो उन महीने ढल जावे।
1: जी। देखिए, जब कोई छोटा बच्चा पहली बार स्कूल आता है ना, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। पहली बार वो अपने घर और माता पिता से कुछ समय के लिए दूर रहना सीखता है।
0: बिल्कुल
1: ऐसे में टीचर की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो एक मार्गदर्शक, मित्र और कभी-कभी माँ जैसा सहारा भी बन जाती है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारी कोशिश होती है कि बच्चा स्कूल को डर या दबाव की जगह एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान के रूप में देखे। हम शुरुआती दिनों में कहानियों, गीतों, खेलों और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं, ताकि वे सहज महसूस करें और नए वातावरण को अपनाने लगे। और अगर मैं एक अभिभावक हूँ, और मैं उस हिसाब से भी बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को नए माहौल में ढलने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को मिलकर बच्चे का उत्साह बढ़ाना चाहिए। जब बच्चा टीचर के चेहरे पर अपनापन और मुस्कान देखता है, तो उसका स्कूल का सफर और अधिक आसान, सुखद और यादगार बन जाता है।
2: बिल्कुल यादगार तो बने ही है, पर आजकल आपा देखा हाँ कि टाबर जका है वे पढ़ाई रो घणो लोड लेवे। अगर कोई दबाव ने कम करने या फिर टाबरा ने मानसिक रूप से चिंता से मुक्त राखण सारू स्कूल में काई बंदोबस्त है जका करिया जाना चाहिए।
1: देखिए, आज के समय में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी पढ़ाई। नई शिक्षा नीति भी इस बात पर विशेष जोर देती है कि शिक्षा केवल अंकों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों के समग्र विकास, रचनात्मकता और भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ावा दे। इसी सोच के साथ विद्यालय में पढ़ाई को बोझ बनाने की बजाय सीखने को आनंददायक बनाने का प्रयास किया जाता है। कक्षाओं में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट वर्क, आर्ट इंटीग्रेशन, खेल आधारित गतिविधियां और समूह कार्य को शामिल किया जाता है, जिससे बच्चे बिना तनाव के सीख सकें। हम बच्चों को केवल सही उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने, सोचने और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और नई शिक्षा नीति के अनुसार भी बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन केवल परीक्षा के अंकों से नहीं, बल्कि उनके कौशल, रचनात्मकता, सहभागिता और सीखने की प्रक्रिया के आधार पर भी किया जाना चाहिए। इसलिए हम बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करते हैं और उनकी तुलना दूसरों से करने की बजाय उनके व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते हैं। और एक शिक्षक के रूप में ये कहना चाहूंगी कि घर पर बच्चों से केवल आज कितने नंबर आए पूछने के बजाय आज क्या नया सीखा पूछना अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा बदलाव बच्चों के मन से प्रदर्शन का दबाव कम कर सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करवाना नहीं, बल्कि ऐसे आत्मविश्वासी, खुश और संवेदनशील बच्चों का निर्माण करना है जो जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक सोच के साथ सामना कर सके।

0: तो लंबी छुट्टियां बाद भी बच्चा अक्सर जो कोई स्कूल जाने से कतराया करे और उन्हारी इन स्कूल एंग्जाइटी ने आप किन प्रकार दूर करिया करो।
1: देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल आना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मेनली क्या होता है, वेकेशन के बीच में उनकी जो दिनचर्या है वो बहुत बदल जाती है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, ज्यादा से ज्यादा माता पिता को देखते हैं और बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ऐसे में स्कूल जब दोबारा शुरू होता है तो उनके मन में एक डर होता है कि कैसे करें, कैसे शुरुआत करें।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा मानना है कि बच्चों की इस भावना को हम समझें, क्योंकि उनको अगर हम डांट कर या जबरदस्ती भेजते हैं तो वो दुखी होकर जाते हैं, जो हमें भी अच्छा नहीं लगता है।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा।
1: इससे अच्छा है कि हम प्यार से और थोड़ा सा पेशेंस के साथ उनकी बात को सुने, उनको थोड़ा समझाएं। स्कूल शुरू होने से कुछ दिन पहले पहले तो आप उनकी दिनचर्या सेट कर दीजिए, थोड़ा सा बदलाव कीजिए उनकी दिनचर्या, सामान्य कीजिए। जैसे कि वो समय पर सो रहे हैं, समय पर उठ रहे हैं, हल्की हल्का सा पढ़ाई उनके दिनचर्या में शामिल हो जाए। ऐसे छोटी छोटी आदतों से क्या वो धीरे धीरे वो क्या टाइमली आ जाते हैं अपने टाइम, मतलब रूटीन में।
0: आजकल हर कोई चाहे कि एडमिशन भी प्रोसेस है जो कुछ साफ सुथरो होवे, तो स्कूल में दाखिला री प्रक्रिया ने पारदर्शी और सोरी बनाने सारू काई कदम उठाया जावे।
1: आज के समय में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी ट्रांसपेरेंट हो जाए और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वो सुविधाजनक हो। जैसे कि बहुत सारे विद्यालय हैं उसमें ये प्रयास किया जाता है कि माता पिता को, पेरेंट्स को एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारी स्पष्ट रूप से पहले से ही समय पर उपलब्ध हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे एडमिशन की पात्रता है, आवश्यक दस्तावेज है या फिर फीस संरचना, ऐसी जो चीजें हैं ये अगर उनको पहले से टाइमली पता चले तो वो बहुत इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके साथ ही हर एक विद्यालय में हेल्प डेस्क या फिर काउंसलिंग की व्यवस्था भी अगर होती है तो अभिभावक अपनी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर जैसे न कोई नए माता पिता एडमिशन करवा रहे हैं अपने बच्चों के, तो उनके मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि वातावरण कैसा है, शिक्षण पद्धति कैसी है, सुविधाएं कैसी है। तो ऐसे प्रश्न वो पूछते हैं, अगर उनका समाधान उनको समय से मिल जाए तो बहुत उनके लिए भी इजी हो जाता है प्रोसेस।
0: तो आजकल जो आधुनिक शिक्षा और तकनीक रो दौर है, तो इन दौर में स्कूल रे मैंने तकनीक और पारंपरिक पढ़ाई रे बीच किन प्रकार संतुलन बनाया जा सके।
1: देखिए, आज का जो टाइम है ना वो बिल्कुल टेक्निकल हो गया है। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में बिल्कुल अंदर तक आ चुकी है। तो लेकिन जहां तक हम शिक्षा की

बात करें तो तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो शिक्षा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में मैं ये मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी कभी भी किसी टीचर का स्थान नहीं ले सकती, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बनाने का एक सशक्त माध्यम कह सकते हैं हम इसको। जैसे कि विद्यालय में

0: बिल्कुल, जैसे कि विद्यालय में तकनीक पारंपरिक शिक्षण दोनों का अगर प्रॉपर वे में करा जाए तो बहुत अच्छा वहां पे प्रभाव पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको पकड़ूंगी। जैसे अगर बच्चों को क्लास में सौरमंडल पढ़ाया जा रहा है तो केवल किताब की तस्वीरें या एक लेक्चर मेथड से उस सौरमंडल के बारे में, ग्रहों के बारे में बताना बहुत मोनोटोनियस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। इसके अलावा हम उनको स्मार्ट क्लास में वीडियोस दिखा सकते हैं, उनको उससे रिलेटेड कुछ पीपीटीज दिखा सकते हैं जिससे कि वो ग्रहों को बेहतर तरीके से समझ जाएं। और रही बात अगर पारंपरिक शिक्षण की तो जस्ट उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डिस्कशन कर ले, हम क्वेश्चन आंसर पूछ ले बच्चों से, या फिर मॉडल बनवा ले, या छोटी कोई एक्टिविटी करवा ले, पोस्टर बनवा ले बच्चों से। तो बच्चों में दोनों तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका वो रचनात्मक जो पहलू है वो भी विकसित होता है और सोचने की क्षमता भी उनकी विकसित होती है।
1: मतलब कुल मिला ने पढ़ाई ने थोड़ा रुचिपूर्ण और इंटरेस्टिंग,
0: रुचिपूर्ण बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो जद बच्चा उन्हें बड़े मतलब उमंग रे साथे पढ़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल। देखो अबार आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है विन लेर भी घनी चर्चे हैं चालती रेवे, तो ये नीति रे तहत स्कूल रे सिलेबस और पढ़ाने रा तरीका में इस साल काई कोई बदलाव देखने मिली?
0: जी बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनका उद्देश्य केवल बच्चों को परीक्षा के लिए नहीं बल्कि समग्र जीवन के लिए तैयार करना है। अब हम ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो रट कर याद ना करे, वो जो सीख रहा है वो उसके जीवन से जीवन में उसको उपयोग कर सके। जैसे बच्चा जो अगर सीख रहा है तो समझ कर सीख रहा है, उसके अंदर कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है और वो कैसे उसको अपने अनुभव में ढाल रहा है। जैसे आज अगर कक्षा की बात करें तो सिर्फ पढ़ाने तक हम सीमित नहीं है, उसके साथ ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बच्चों को हम उसको जोड़ते हैं बच्चों के, जैसे उनकी अपनी जिंदगी में जो हो रहा है उसको हम पढ़ाई के साथ उस टॉपिक के साथ जोड़ देते हैं कि बेटा अगर ऐसा हुआ हाँ तो कैसा होगा।
1: बिल्कुल,
0: जैसे
1: बिल्कुल।
0: हम अगर हम वृक्षारोपण की बात करें तो सिर्फ हमने पढ़ा दिया कि वृक्षारोपण करना चाहिए ये वो, ऐसा ही सीमित ना हो, उसके साथ हम बच्चे को ये बताएं कि बच्चे आपको एक छोटा सा जागरूक अभियान करना है या फिर कोई पोस्टर बना है वृक्षारोपण, या आपको वृक्षारोपण के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है, ये आप सोच के लिखो, ये आपको कहीं बुक से देख के नहीं लिखना है, आपको सोच के लिखना है। तो इससे क्या होगा, वो जो सीखेगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसके लिए प्रभावी होगा,
1: बिल्कुल
0: आगे भी उसके लिए काम आएगा
1: और वो उनकी तरफ आकर्षित भी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उसको सोचने के लिए हम समय दे रहे हैं। बिल्कुल।

0: तो बिल्कुल देखो, बच्चा ना मैंने रटने की आदत भी ज्यादा होया करे है
1: जी,
0: तो क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल्स विकसित करने वास्ते कई प्रयास कर सके हैं।
1: या आज का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बच्चों को सिर्फ जानकारी देना नहीं, उसको सोचने समझने और सही निर्णय के लिए तैयार करना है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं कि उसको उसके जीवन के लिए तैयार करना है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात पर जोर देती है कि बच्चे केवल उत्तर को याद ना करें, वो ये समझे कि उत्तर तक पहुंचना कैसे है। जैसे मान लीजिए अगर किसी क्लास में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से केवल फॉर्मूलाज याद करने के बजाय आप उनको एक छोटा सा टास्क दे सकते हैं। जैसे कि आप उनको बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक स्कूल का एक एजुकेशनल ट्रिप प्लान करना है, आपके पास एक निश्चित बजट, इतने पैसे हैं आपको आपके पास, उसी में आपको ट्रांसपोर्ट, फूड और अन्य खर्चों का मैनेजमेंट करना है, सारा मैनेज करना है। तो अगर हम ऐसे टास्क बच्चों को देंगे तो बच्चा जो क्या है गणित को, मैथ्स को अपने रियल लाइफ से क्या होगा जोड़ के देखेगा और उसमें उसके अंदर सोचने की क्षमता और भी ज्यादा विकसित होगी। इसी प्रकार अगर जैसे कोई स्टोरी रीडिंग है, अगर टीचर ने कोई स्टोरी सुनाया तो उसमें सिर्फ ये ना पूछे कि कहानी का सार क्या है, कि आपने क्या सीखा, आप उसको थोड़ा सा डिफरेंटली आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा अगर आप कहानी के मेन कैरेक्टर होते तो इस सिचुएशन में आप क्या करते। तो इससे क्या होगा, उनकी जो तर्क शक्ति है, उनका जो निर्णय क्षमता है वो बहुत डेवलप होगा, वो सोचेंगे, वो सोच के, और हर एक बच्चे से आपके पास अलग अलग जवाब आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आएगा।
0: मतलब खाली किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: आप उन्हें अपने जीवन से जोड़ने, जीवन से पढ़ाई और ज्यादा आनंदमय बन जाए।
1: जी जी बिल्कुल
2: बिल्कुल। और जब अगर विकास की बात आवे तो वारो जो को पूरा विकास है वो जद ही हुए जब स्कूल और घर दोनों साथ चले, तो टावरा ने सगला तरह का विकास सारू आप वारा माता पिता और वारा गुरु जी के बीच में किया रो तालमेल है जो को होना चाहिए।
1: देखिए बच्चों के पूरे विकास में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की भूमिका समान रूप से, अगर मैं कहूँ बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम बच्चे के विकास को एक जर्नी माने, एक यात्रा माने, तो पेरेंट्स और टीचर दोनों उसके मार्गदर्शक है, दो मार्गदर्शक है। इसलिए दोनों के बीच ओपन कन्वर्सेशन होना, आपसी विश्वास और सहयोग, कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी होता है। बच्चे की जो शिक्षा होती केवल क्लास तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसकी जो हैबिट्स है, उसकी लाइक वैल्यूज है, वो सारी चीजें, इवन उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी, ये सारी चीजें उसको दो जगहों से मिलती है, एक तो होता है घर, दूसरा होता है स्कूल। तो ये तभी पॉसिबल होता है, ये तभी संभव हो सकता है जब बच्चा, दोनों तरफ से बच्चे को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जैसे पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स स्कूल की जो एक्टिविटीज है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन, ओपनली कन्वर्सेशन रख रहा है कि कैसे चल रहा है मैम, और बच्चे को एक, इसी के साथ बच्चे को एक सहयोगी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहा है। और एक और बात है, पेरेंट्स जो होते हैं उनको सिर्फ बच्चे के मार्क्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको बच्चे के जो इंटरेस्ट है, उनका जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है और उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है, उन सारी चीजों को भी समझना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चा अपनी गति से सीखता है, अपनी स्पीड से सीखता है, और ये बहुत ही नॉर्मल है। इस जगह पे आपको ये तुलना नहीं करना है कि उनका बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, हमारा बच्चा नहीं कर रहा है। हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चा सीखता है, उनकी अलग अलग गति होती है,
2: हर बच्चा में एक अलग खास चीज हुई और भी खास चीज ने
1: टैलेंट होता है, हर एक बच्चा टैलेंटेड होता है।
2: बिल्कुल
1: जी।
0: तो जब आप अभिभावक की बात कर ही रहे हैं तो घर पर पढ़ाई रो अच्छा माहौल

0: पढ़ाने वास्ते अभिभावक ने आपका ही सलाह देनी चाहोला।
1: देखिए, मैं पेरेंट्स से हमेशा एक बात कहती हूँ कि घर को मिनी स्कूल बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी एक स्कूल में पढ़ रहा है, बल्कि उसे लर्निंग फ्रेंडली होम है। बच्चे केवल जो होते हैं ना, किताबों से नहीं सीखते हैं, वो अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं और बच्चे सुनकर भी सीखते हैं। माता पिता आपस में कैसे बिहेव करें, उनका आपस में कैसा बिहेवियर है, वो देख के सीखते हैं। तो जैसे कि मैं मानती हूँ कि बच्चा जब घर आता है तो उसके ऊपर आते ही प्रेशर होता है। आज आपने काम किया, स्कूल में सारा वर्क कर लिया, इसके बजाय आप उनसे ये पूछो ना कि बच्चे आज स्कूल में सबसे मजेदार क्या हुआ, आज आपके कितने दोस्त आए थे, आपने क्या सीखा। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे सवाल बच्चों से पूछते हैं तो उनके भी मन में एक जो डर झिझक होता है वो दूर होता है, उनके मन में एक डर या दबाव होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स को उनसे उम्मीदें होती है, बेटा आपको तो इसमें पूरा मार्क्स लाना है। ऐसे नहीं होता है,
0: स्कूल में तो पढ़ाई रवि है और घर जाते ही माता पिता कहते हैं कि होमवर्क है जो पहले कंप्लीट करना है,
1: पहले करना है आपको, ये करना है, आप होमवर्क करोगे तभी आपको खेलने को मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो माता पिता का जो ये होता है ना, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्कूल की भी है ऑलरेडी, उनकी भी है। और पढ़ाई जो होती है केवल टेबल चेयर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी दिनचर्या देखें तो किचन में सब्जियां गिनते हुए भी मैथ्स सीख सकता है बच्चा, अखबार पढ़ते हुए के जो भाषा कौशल है वो विकसित हो सकता है, और परिवार के साथ अगर वो बात कर रहा है तो उसका जो कन्वर्सेशन है वो भी डेवलप हो रहा है। तो बच्चा अपने घर से बहुत कुछ सीख रहा है।
2: बिल्कुल, खेल खेल में भी आप अभी ने कई चीजें सिखा
1: सका। बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल। और आज भी देखो सबसे बड़ी समस्या है कि टाबरा रो जो को मोबाइल है, टीवी देखना है, तो स्कूल के बाद में टाबरा ने इन स्क्रीन टाइम सु रोकन सारू या फिर कंट्रोल करण में वारा जका माता पिता है बा कई जिम्मेदारी निभा सके आपरी।
1: मैं इस विषय को स्क्रीन टाइम नहीं बल्कि चाइल्ड टाइम के रूप में देखती हूँ। अक्सर हम ये गिनते हैं, बच्चा कितने देर, मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने इतने देर मोबाइल देखा है ना, हम ये नहीं सोचते हैं कि बाकी समय में वो कर क्या रहे हैं। ये आजकल के टाइम में जो मोबाइल है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, आकर्षक हो गया, बच्चे को आकर्षक इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एक टिप पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत कुछ सीख रहा है ना। तो तुरंत तो उसको सेटिस्फाई वो बच्चा हो रहा है, अगर उसके मन में कोई प्रश्न है, कुछ सीखना चाह रहा है, तो उसने सिर्फ सर्च किया और उसके सामने सारा रिजल्ट, तो तुरंत उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया। इसलिए घर पे अगर बात करें तो घर पे सिर्फ नियम बनाना पर्याप्त नहीं होता है, बच्चों को उसके वास्तविक जीवन से जोड़िए। माता पिता क्या कर सकते हैं प्रयास कि स्कूल के बाद थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को दे, थोड़ा सा टाइम मीन्स जो ऐसा समय जो स्क्रीन से ज्यादा रोचक हो, स्क्रीन से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। जैसे बच्चे साथ खुलकर बात करो, बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, कौन कौन सी मैम ने क्या पढ़ाया, वो बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। परिवार के साथ बैठ के ओपनली बात करना, कोई शौक, जैसे बच्चा कोई ड्राइंग कर रहा है तो चलो चलो आज हम थोड़ा एक ड्राइंग बनाते हैं, है ना। या फिर बच्चे को अगर सॉन्ग पसंद है, म्यूजिक या डांस पसंद है, चलो थोड़ा डांस करते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, माता पिता थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। तो जब बच्चे का जीवन विविध अनुभवों से भरा होगा तो स्क्रीन अपने आप सीमित हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं जोड़ना चाहती हूँ इसमें, कि स्क्रीन टाइम को हमेशा दुश्मन की तरह ना देखे। जब बच्चा कोई नई चीज सीख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है जिससे उसको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो स्क्रीन का पॉजिटिव वे में यूज कर रहा है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो स्क्रीन कितने देर यूज कर रहा है, हमें ये देखना है कि स्क्रीन पे देख क्या रहा है, उसका कंटेंट क्या है। कंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए, कंटेंट क्या है। और मेरे हिसाब से देखिए, मैं तो मानती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो निगरानी करने वाले की नहीं बल्कि मार्गदर्शक की होनी चाहिए। वो गाइड करे बच्चे को कि बेटा आपने बहुत देर देख लिया, चलो अब कुछ करते हैं, थोड़ा
0: डांट डपटने नहीं, थोड़ा सा प्यार से समझाओ तो बच्चा बिल्कुल आराम से एक्सेप्ट करेगा।
1: बिल्कुल, आराम से बच्चा आपकी बात सुनेगा।

0: राजा बेटा बन।
1: तो बिल्कुल स्कूल की इतनी बात कर रहे हैं रिंपा जी, तो थोड़ा सो आप निजी जीवन रे माते भी बात कर ला कि जब आप छोटा हो और आपकी गर्मी री छुट्टियां खुलती तो स्कूल जाने री पहली जी तैयारी और स्कूल से जुड़ा कुछ अनुभव है वह भी मान श्रोता हमारे साथ साझा कर दो।
2: मैं अपने बचपन की बात करूँ ना तो मैं बहुत पहली बताऊँ ओपनली बता रही हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत शाई थी। तो समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा उत्साह भी था मन में होता था और चुनौती भी होती थी।
1: अच्छा।
2: कि मैं स्कूल में जाऊंगी, टीचर्स क्या सवाल पूछेंगे, मेरे पास मेरे कौन से दोस्त बैठेंगे, दोस्त आएंगे भी नहीं, तो मेरे लिए नए लोगों से घुलना मिलना बहुत आसान नहीं होता था। तो मुझे याद है स्कूल के आखिरी दिनों में मैं अपना वही है कि स्कूल बैग यूनिफॉर्म सब ये सब अरेंज कर रही होती थी, लेकिन तैयारी तो क्या होती थी, मैं अपने आप को तय करती थी स्कूल जाना है, रूटीन में जाना है। तो बट स्कूल के फर्स्ट डे ये सोचती थी कि कौन बैठेगा, किसके साथ, कैसा मेरा बैठेगा कि नहीं,
1: बेंच मिलेगी या लास्ट,
2: फर्स्ट बेंच मिलेगी लास्ट मिलेगी,
3: सवाल सबके मन में हुए,
2: सवाल सबके मन, और टीचर्स मुझसे ना पूछ ले डर। हाँ। तो वो सारी चीजें होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय करीब आता था उत्साह होती थी क्योंकि बहुत दिन बाद अपने दोस्तों से मिलना, अपने फेवरेट टीचर्स से मिलना एक बहुत अच्छा रोचक होता था मेरे लिए। तो इंट्रोवर्ट थी इसीलिए शायद आज एक शिक्षक के रूप में मैं उन बच्चों की भावनाओं को समझ पाती हूँ जो छुट्टियों के बाद या पहली बार स्कूल आने में थोड़ा संकोच महसूस करते हैं या उनको डर रहता है कैसा होगा। तो कुछ बच्चे पहले दिन ही, देखिए बच्चे तो डिफरेंट होते हैं, कुछ बच्चे पहले दिन से बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अच्छे से घुल मिल जाते हैं, टीचर्स के साथ ओपनली बात करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं। तो मेरे स्कूल, मेरे लिए जो मेरा स्कूल था उसकी सबसे अच्छी बात ये रही है कि उसने मुझे ये सिखाया है कि केवल पढ़ाई नहीं, जीवन में लोगों से जुड़ना, विचार व्यक्त करना या कॉन्फिडेंस रखना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो स्किल्स मेरे अंदर मेरे स्कूल ने डाला। इसलिए मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप भी थोड़े शांत या इंट्रोवर्ट डर लगता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। स्कूल केवल सीखने की जगह नहीं बल्कि खुद को पहचानने और निखारने की भी जगह होती है।
3: बिल्कुल रिंपा जी, जितना भी श्रोता अपना जगह है रेडियो सुन रिया है, कोई विद्यार्थी है तो उनारा जगह अभिभावक है वाने आप कहीं कहनी चाहोला।
2: नहीं, ये समर वैकेशन है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बच्चों से मिलने के लिए। तो स्कूल का माहौल फिर से मेरे बच्चों की हंसी, उनके एक्साइटमेंट, उनकी बातों से भरने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हर एक स्कूल का टर्म होता है वो एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नया चांस, एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, खुद को थोड़ा और चेंज करने का।
3: बिल्कुल।
2: तो

0: डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि सीखना जो होता है बेटा, वो सिर्फ क्लास तक ही लिमिट नहीं होता है। कभी एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लेना, कभी किसी दोस्त की मदद कर देना, कभी कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, या फिर कभी किसी कोई नई एक्टिविटी सीख लेना, ये भी सीखने का ही हिस्सा होता है। और इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से मत डरिए। हो सकता है आपकी अगली बड़ी कोई अचीवमेंट किसी क्लासरूम में नहीं, बल्कि किसी स्टेज पर, किसी प्लेग्राउंड में या किसी एक्टिविटी रूम में आपका वेट कर रही हो। और पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ सीखने की इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, उनके एक्सपीरियंस सुनिए, उनके जो क्वेश्चन, उनकी जिज्ञासाएं हैं उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनके साथ छोटी छोटी खुशियां मनाइए, उनकी हार को भी सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा नहीं है तू जीत के आएगा तो
1: बिल्कुल।
0: साइकिल दिलाऊंगा, अगर हार के भी आता है तो भी उनको गले लगाइए। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे को जो ये होते हैं ना, बहुत कॉस्टली चीजों की जरूरत नहीं होती है, उनको अपने माता पिता की जरूरत होती है, उनके वक्त की, उनके टाइम की जरूरत होती है। और अगर बच्चों की बात करूं, समय की बात करूं, तो आज के बच्चों के पास अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है, और चैलेंजेस भी है, दोनों बराबर चल रहे हैं। तो सिर्फ हम उनको सफल बनाने के लिए नहीं, उनको जिज्ञासु, जिम्मेदार, और लाइफ को कैसे टैकल करना है, कैसे सामना करना है हर परिस्थिति को, इसके लिए हम तैयार करना सिखाएं। और बच्चों से एक और बात कहना चाहूंगी कि जब भी टाइम मिले बेटा, कम से कम एक नई चीज सीखिए, एक नई किताब पढ़े, एक नया दोस्त बनाए, और एक ऐसा काम करे जिससे आपको खुद पर गर्व महसूस हो।
1: बिल्कुल जरूर करेला। और रिंपा जी, आज री आ जानकारी सगला विद्यार्थियों खातर वारा माता पिता रिवाज थे वो एक मोटो मार्गदर्शन बनियो है।
0: जी
1: और आप री आज सगली जानकारी टाबरा रे जीवन रिवाज थे और टाबरा ने नवा सत्र री चौकी शुरुआत करने में भी मदद करेला। तो रिंपा चक्रवर्ती जी, आज आप टेम निकाल इतनी बढ़िया जानकारी दी इन रिवाजते आकाशवाणी राय मंच पर पधारवा खातर और टाबरा रो हौसलो बंधावा मार्ग दिखावा खातर आप रो पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सा।
0: मैं भी आकाशवाणी की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आज आपने अवसर दिया कि इस विषय पे, इस टॉपिक पे मैं कुछ बोल सकूं सबके सामने। धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम सा।

0: तो पूनम जी आप पढ़ाई लिखाई की बात आप कर रहे हैं, हाँ, पर आप एक चीज देखी, आधुनिकता ने मायने कितनी सुविधाएं होगी, हर एक चीज बच्चा ने आपा तैयार कर देता, पर अपना टाइम भी अगर आप बात करा तो अलग ही माहौल हो भी टाइम जी की किताब है तो पुरानी किताब आपा लेवन वास्ते करता देखता कि आपने किताब है जी कि कनु लेनी है कौन अच्छी तरीका से किताब है जो राख रही है आपा सबसे पहले कोशिश करता कि क्लास रहा जो बच्चे है जो सब होशियार है भी आपा संपर्क करा और किताब आपा लेवा।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल, और पास फेल होना कोई मतलब नहीं था उन टाइम, परसेंटेज की बढ़िया है और भी अपा कोई इनको ही संबंध नहीं रखता, बस और जरूरी हो कि अपने पास होना है,
0: बिल्कुल
1: परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता। और किताबा रा मायने अपा पीपल रा पत्ता हो गया, मोर पंख हो गया या विद्या जी का पत्ता है वे रखकर होशियार हो सकता है, एडी धारणा पर रखता।
0: बिल्कुल। और आप पार्टी जत सुखा था जत कई बोलता पार्टी पार्टी सुख जा विद्या विद्या आ जा बिल्कुल। और जो की पुरानी कॉपियां होती ने आप संभाल रखता बारो आप उपयोग में लेता ही, और ज्यादा ज्यादा खाली पन्ना बचा था आपा, और एक खाली पन्ना अलग कलर वाने निकाल और एक जगह पर रखता और प्रेस वाला ने ढूंढता ताकि मोल भाव कलर बाकी जो की बाइंडिंग है वापा करवा सकता। और वास्ते आपा ने कई बार चक्कर लगाना पड़ता, आपनो कोई बड़ो भाई या बड़ी बहन होती तो बिन कहता तुम जल्दी सी करा ला करा
1: बिल्कुल
0: ला।
1: बिल्कुल सही किया कोमल। और स्कूल में तो कुछ बोलने रो सवाल ही को नहीं हो, जन कई बार सजा मिलती नहीं, कान पकड़ लो या पचे बेंच पर खड़ा हो जाओ, कक्षाओं बारे कई बार खड़ा होना पड़ता, तो ये सगली सजा आप हंसता हंसता सह लेता, उन टाइम इतनी सहन शक्ति ही
0: बिल्कुल
1: टाबरा रे
0: सहन
1: मायने।
0: सकती ही। और जब अपन ने कोई नई कॉपी भी चाहिए थी तो आप माँ सु है ना पापा की सिफारिश लगा था कि ना हमारा बुक है जो की किताब है जो की लानी है, और अगर बे मना कर देता तो बे ना करता तो भी ना ने भी आपस स्वीकारता ज्यूं भी अपन जो की सहनशीलता है बबड़ी।
1: बिल्कुल, और बस्तर मतलब एक कपड़ा री थैली होती जो पुराना कपड़ा ने सीलने बनाई जाती, आजकल तो देखो हर साल बस्ता चेंज हुए और नित नया बस्ता टाबरा री मांग है जिको बहना चाहिए नित नया बस्ता।
0: बिल्कुल। और बैग री वॉटर बैग जो को अभी रा नाम री तो चीज अस्तित्व में ही नहीं, आपा तो सीधा जार स्कूल रो जो को हो वो जो को टंकी
1: टूटी
0: बन रही
1: लागोड़ी
0: होती
1: होती।
0: भी
1: हाँ
0: मुंह लगा रहा पानी पी लेता चाहे साफ पानी हो साफ है या नहीं है टंकी साफ है या नहीं है आ चिंता अपने मन में नहीं रहती। और जो की प्यास है वह भी पूरी हो जाती शर्ट ऊपर कर श्री बाया सुमू आप मुंडो पूछ लेता। साइकिल भी टाइम लग्जरी ही अब भी टाइम ग्रे मायने, अगर साइकिल होती भी तो हर बार बचेन उतरती और चेन लगा उनमें भी अपने काफी दिक्कत आती हाथ और मुंडा काला भी हो जाता।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल, बच्चा रे सगड़ा दोस्तारो पत्तो भी अपने माँ बाप ने होता हो कि बेकट्ठे जा रिया है कई कर रिया है, और बड़ो डर हो और सम्मान भी हो मन रे मायने।
0: बिल्कुल आ सब बात सु आपा की ना की जरूर सीखता हाँ आज भी सीखा, बस तरीका बदलगा तौर तरीका बदलगा साधन बदलगा।
1: समय बदल गयो सब कुछ बदल गयो, लेकिन जीवन ने खाली कागज पर स्याही रो जो धब्बा पड़िया है वे आज भी बेड़ा ही है, और आ नीली स्याही सहन सहलता दी उज्जवल भविष्य दियो लड़ने री ताकत दीवी। तो कल स्कूल जाने री तैयारी सिर्फ पोथिया ने बस्ते में घालने को नहीं व्या करे है, अब तो जीवन री हर चुनौती सु लड़बारी तैयारी होया करे है, टाबर स्कूल सु सिर्फ आखर ही नहीं सीखे वे संस्कार भाईचारो धीरज भी सीखिया करे, तो आज रो टाबर जो कड़ी है वो काल ने इन देश रो उजलो बाग बनेला, जिया टाबर स्कूल री घंटी सुनने दौड़ लगाया करे है, यही आज रो कार्यक्रम आप सवार दिलारे ने नई उमंग जगाई हुवेला।
0: बिल्कुल। और टाबरा री प्यारी मुस्कान और माँ बाप ने उन्हें संजय उड़ा सपना रे सागे राखता थका। अब मैं इन प्रोग्राम रो अठही समापन करा और आज इन पोत पाटी री बाता विशेष गणगौर कार्यक्रम में आपरे साथे ही दो सखियां कोमल राठौड़ और पूनम देवड़ा और इनरी प्रस्तुति और संयोजन हो
1: रामनिवास चोयल।
0: चलता चलता हुई कहना है कि कोरी मारा घड़ा है टाबर जिया घड़ाला बिया ही घड़ जावेला शिक्षा और चोखा संस्कार ही वारो भाग जगावेला। तो इनरे साथे ही अब दोनों सखिया ने दिराओ सीख
1: चाला राम राम।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।

0: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
3: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
6: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घनघोर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्वकप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श

0: लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

0: संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केन्द्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज

0: के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। दिन के ठीक 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की एपिसोड संख्या 1313।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो श्रोताओ कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की

0: बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुमसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुमसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहां की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया? अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुमसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुमसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसाकर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुमसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुमसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुमसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का यह सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves.

0: सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने

0: के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
1: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
2: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
2: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
0: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
3: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
3: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
0: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे

0: उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
0: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुल्के, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
2: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
0: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
1: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी।

0: पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिंहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके

0: अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की एपिसोड संख्या 1313। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त दिन के 3 बजे हैं। अब आज की ये पहली सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

राम राम सा आकाशवाणी रे मनभावने कार्यक्रम युववाणी में आप सगड़ा श्रोताओं रो घणे मान स्वागत है। मु आप रो रेडियो साथी देवी सिंह हाजिर हूँ माइड भाषा रे इणे कार्यक्रम में। साथड़ा आज है बुधवार और बुधवार रे दिन हुआ करे खास फरमाइशी कार्यक्रम। यदि आप भी मन फरमाइशा भेजना चाहो, आप राजस्थानी लोक गीत और लोक भजन सुनना चाहो तो मासू इन प्रोग्राम में जुड़ सको। जुड़न सारू आपने माने व्हाट्सएप रे नंबर माते मैसेज लिखकर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 94133-29-359। नंबर एक बार फिर सुन ले रहा हूँ, 94133-29-359।

0: सदना बाप ने सुनावा एक भेंट वार्ता। सामाजिक कार्यकर्ता श्री धर्मेंद्र विश्नोई से नितेश देवड़ारी बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर FM 102.1 पे आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त RJ नीतीश। और आज हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद है जिन्होंने जीव दया, गौ सेवा और जल संरक्षण को अपना जीवन का मिशन बना लिया। हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में धर्मेंद्र विश्नोई का। सबसे पहले आपका युववाणी में बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र। अपने बारे में और अपने सेवा कार्य की शुरुआत कैसे की हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: नमस्ते धर्मेंद्र विश्नोई। मैं बचपन में मेरे दादाजी वन्य जीव में पशुओं की सेवाएं करता था। उस टाइम मैं छोटा था, उस टाइम दादाजी को काम को देखते हुए मैंने भी मैं बड़ा होकर मैं भी ये सेवाएं स्टार्ट करूंगा। मेरे को आज 7-8 साल हो गए हैं वन्य जीव में पशुओं के लिए सेवा कर रहा हूँ। मैं सवेरे 5 बजे उठ के चला जाता हूँ और 10-11 बजे वापस आता हूँ। काफी खेलियां हैं, तालाब हैं, उनके मैं वन्य जीव में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ, साथ साथ चुगे की। और मैं एक ये बताना चाहता हूँ, मैं गाँव में मेरे 15 से 20 है देसी वो मटकियों में पानी भरता हूँ, वो खेजड़ियों के ऊपर बाउलियों के ऊपर रखता हूँ मैं। उसके साथ पास में जीवों के लिए चुगे पानी की भी व्यवस्था करता हूँ।
1: वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि गर्मियों में आप प्रतिदिन हजारों लीटर पानी पशु पक्षियों तक पहुंचाते हैं, इस अभियान को संचालित करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती है?
2: अब की बार राजस्थान में पानी की ज्यादा किल्लत चल रही थी तो मेरे को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। मैं दिन में 15-25 हजार लीटर पानी डालता हूँ अलग अलग गाँव में, गुड़ा विश्नवान, खेजली, अपने बिडासनी, पास पास के जहाँ जहाँ मेरे पास कॉल आते हैं मैं वहाँ वहाँ जाके वन्य जीव पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ।
1: तो धर्मेंद्र जी, आप इतने हजारों लीटर पानी एक दिन में सब जगह पहुंचाते हैं, आप ये अकेले करते हैं या आपके पीछे पूरी टीम है इस सेवा में?
2: मैं पर्सनल करता हूँ, मेरे पास फोन भी आते हैं कि मेरे नाम से 2 पानी के टैंकर डालने। मैं नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ मैं पर्सनल घर से पैसे डाल के मैं सेवाएं करता हूँ। दूसरे करते हैं उनको मैं उनके नंबर दे देता हूँ, वो उनके पानी के लिए व्यवस्था कर देते हैं।
1: मतलब आप ये सारी चीजें 8 साल 10 साल से कर रहे हैं और निरंतर आप ऐसा करते जा रहे हैं, और मैं ये साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि मतलब रोज लगातार सालों साल ये जो आप में एनर्जी है कि सुबह उठना और हजारों लीटर पानी खुद की जेब से पैसे लगाकर इन वन्य जीवों तक पहुंचाना, तो वो ऊर्जा आप में कहाँ से आती है?
2: मैंने ये दर्द देखा था, मैं पहले बचपन था उस टाइम मैं वन्य जीव बेचारे एक खेली के अंदर 2-3 ये छोटा गाय का बछड़ा पानी की तरस ले पानी के अंदर खेली के अंदर डेथ हो गई थी पानी के पीने के चक्कर में। उससे मैंने प्रेरणा ली, बेचारे ऐसे जीव जंतु, लोग तो पानी मांग के पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था कौन करे।
1: तो आप निरंतर 8-9-10 सालों से पशुओं की सेवा कर रहे, कोई ऐसा मोमेंट रहा है क्या जब आप पानी पिलाने गए हो, कोई पशु पक्षी आपके पास आए हो, आपको देख के लगा उनकी आंखों में कि हाँ भाई कि जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ?
2: मैं ट्रैक्टर की आवाज आती है तो वे मेरे कम 40-50 गए हैं सांड है, वो मैं ट्रैक्टर की आवाज देके वो आ जाता है, मैं बुलाता हूँ। उस टाइम 40-50 झुंड पूरा आता है मेरे देखने, देखो भाई पानी पानी आ गया है, फिर उनको मैं गुड़ भी खिलाता हूँ। मेरी आवाज से

0: कहीं दूर दो दो किलोमीटर की आवाज चली जाएगी तो वो चला के वहां मेरे पास आ जाएंगे।
1: और धर्मेंद्र जी, वही साथ ही साथ देखा गया कि कोरोना काल के दौरान भी आपने सेवाएं, जो आपका कार्य है, वो आपने जारी रखा, आपने उसे रोका नहीं। और उस समय कोई एक ऐसा अनुभव जो आज भी आपके दिल के करीब हो?
0: कोरोना काल में मैं उस टाइम में 4-5 दिन तो मैं घर पर रहा। फिर मैं थाने से परमिशन ले ली थी मेरी गाड़ी की, उसका कैंप लगा था कुड़ी में, वहाँ खाना बनाते थे सुबह शाम। एम्स में होटलें सब बंद हो गई थी, उनके परिजन रहते थे, उनको खाने की व्यवस्था करता था। उसके बाद मैं गलियों के अंदर गए थे, उनको रिजिक की व्यवस्था करता। फिर मैं शाम को गाँव जा रहा था, बेचारे झुंपड़ पट्टी वाले पानी के लिए तरस रहे थे। क्यों तरसने का वजह ये था कि टैंकर वाले सब गाँव चले गए थे, सब लॉकडाउन लग गया था, तो वो झुंपड़ पट्टी पानी पाने के लिए तरस रहे थे। घर में किसी को एंट्री करते देते नहीं थे, तो उससे मैंने भाई ये झुंपड़ी पट्टी में मैंने बहुत सारी व्यवस्था की पानी की पिलाने के लिए।
1: धर्मेंद्र जी, आपने बताया कि जब आप, आपके पास किसी का फोन आता है तो आप फटाफट वहां पहुंच जाते हो, कभी गांव में, कभी जंगलों में, और कभी कभी ऐसे सूखे जल स्रोतों तक जहां मतलब आम लोगों का पहुंचना संभव नहीं है। तो जब ये सारी चीजें एक साथ आपके साथ हो जाती है, तो इन सब चीजों को आप मैनेज कैसे करते हो?
0: मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो भाई आज मैं आप फोन आ जाता है 1-2 दिन पहले, मैं भाई हमारे आज पानी खत्म होने वाला है तालाब में, तो मैं वहाँ सुबह जल्दी उठ के वहाँ पानी डाल देता हूँ। फिर कंटिन्यू मैं जहाँ जहाँ फिक्स होता है वहाँ वहाँ पानी डालता हूँ मैं, तो पहले जाके वहाँ व्यवस्था करता हूँ। फिर वहाँ कोई और आ जाता है तो दूसरे तालाब में और भी व्यवस्था करता हूँ मैं।
1: कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग आपके पास आते हो कि आप जैसा काम करते हो वैसा मेरे को भी करना है, तो आप मेरे को मोटिवेट करो कि हम कैसे करें?
0: ये घटना बता तो मैं लॉकडाउन टाइम में मेरे मित्र है झालमंड में है, प्रजापति है, वो वैष्णव है, उन्होंने मेरे को कॉल किया, भाई साहब मैं आपसे प्रेरणा लेके मैं प्रतिदिन मैं वन्य जीवों के लिए सेवाएं कर रहा हूँ। वो मेरे को बराबर फोटो भेजते थे मेरे पीछे काकाणी में, काफी गाँव में मेरे पीछे, मैंने इसलिए सोशल मीडिया पे हर पोस्ट करता हूँ, लाइक आए नहीं आए ये वो अलग बात है, पोस्ट मैं करता हूँ। मेरे देखने से लोग प्रभावित होते हैं और वो सेवाएं बहुत करते हैं, तो मेरे उनको देख मेरे को बहुत सुकून मिलता है भाई, मेरे इस एक काम से हजारों काम हो रहे हैं, वन्य जीवों के लिए पानी की राहत मिल रही है।
1: और वही देखा गया सोशल मीडिया पे जो चीजें ट्रेंडिंग चलती हैं, लोग उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लोग सोचते हैं अगर हम पर्यावरण के लिए कुछ करेंगे, 2-4 पेड़ लगा लिया, या कहीं पानी नहीं है पशु पक्षियों के लिए, वहां पे पानी पहुंचा दिया, तो लोगों को लगेगा कि ये पर्यावरण प्रेमी है या फिर जल संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो ये सारी चीजें रीलों के लिए करते हैं या फिर फेमस होने के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सबसे यही कहूंगा भाई कि रील बनाओ, अलग बनाओ, बाकी ये अलग सेवाएं करनी चाहिए वन्य जीवों पशुओं के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है अपने राजस्थान में, तो इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा भाई सबसे ज्यादा वन्य जीवों पशुओं के लिए सेवाएं करें।
1: और आपने कभी ऐसा देखा है कि जहां आपने एक नया जल स्रोत बनाया हो वहां पे कोई प्रजाति विलुप्त हो रही हो, और आपके वहां जल स्रोत बनाने से और निरंतर उन जीवों का ध्यान रखने से जो प्रजाति विलुप्त हो रही थी आज वो कुछ संख्या में वहां पे और जीव हो गए, तो ऐसा कहीं आपने देखा है?
0: एक मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा भाई कि हिरन अभी हमारे इस इलाके में काफी गुड़ा पिछले आने में कम हो गए हैं। कम होने का कारण यह है कि उन्हें दोरे पहले दोरे बने, अब तारबंदी कर दी, जालियां लगा दी, उससे हिरण का भी कम हो गए, हिरण आगे चले गए पाली उस साइड में। तो मैं सबसे यही कहूंगा भाई तारबंदी और ये जाली हटानी चाहिए।
1: और वही साथ ही साथ अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? यदि कोई युवा समाज सेवा से जुड़ना चाहता है तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
0: मैं मेरे युवा भाइयों से यही कहना चाहूंगा, किसी का जन्मदिन आए तो बड़ी बड़ी होटलों में हजारों लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने आसपास में जहाँ भी गौशाला हो या कहीं भी हो तो अपने गौशाला में बर्थडे मनाना चाहिए, वहाँ चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, या टीन शेड लगाना चाहिए, या कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा सभी युवाओं से भाई बर्थडे वहाँ गौशाला मनाना चाहिए। आप मनाओगे, आपके दोस्त मनाएंगे, इससे हजारों लोग मनाएंगे, तो आप गौशाला के लिए गयों के लिए अपने फायदा मिलेगा।
1: और वही साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि आपको कई सम्मान मिले, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था?
0: मेरे को सम्मान का मैं शौक नहीं, मेरे को वन्य जीवों की सेवा करता हूँ, मेरे ये सबसे बड़ा ये सम्मान है। मेरे को 2025 में राज्यपाल ने और मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था उदयपुर में, वो सम्मानित मेरे लिए कुछ नहीं, मैं वन्य जीवों के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, वो मेरे सबसे बड़ा सम्मानित है। मैं सबसे यही कहूंगा मैं जो सम्मान मिला ये सब आपकी बदौलत मिला है, वन्य जीवों का आशीर्वाद से मिला है, और मैं तो निरंतर जब तक सांस है तब तक ये सेवाएं करता रहूंगा।
1: वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में आपके कौन कौन से नए लक्ष्य हैं और क्या क्या योजनाएं हैं आप वन्य जीव के लिए और क्या क्या करना चाहते हैं?
0: मैं अब तो बारिश की सीजन आएगी तो मैं हर साल पेड़ पौधे लगाता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, वो नहीं को पेड़ पौधे लगा दिए फोटो लगा दिए फोन नहीं है, तो पेड़ पौधे लगाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, उनको बड़ा भी करता हूँ। सब युवाओं से ये कहूंगा अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, सभी युवा अपने आस पास अपने घरों में अपने स्कूलों में या गार्डनों में पेड़ पौधे लगाए तो अपने गर्मियों में इस पेड़ पौधों से राहत मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और धर्मेंद्र जी, आपने अपने कार्यों से ये साबित किया है कि आप समाज बदलने के लिए बड़े संसाधनों से ज्यादा

0: बड़ा दिल और मजबूत संकल्प चाहिए। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ प्रोग्राम युववाणी में जुड़े। पेड़ों की छांव, परिंदों की प्यास और धरती की मुस्कान, यही है इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान। जो जीवों की रक्षा में अपना जीवन लगा दे, उससे बड़ा नहीं होता है कोई और इंसान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम युववाणी में पधारे और जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है, वो सारी बातें हमारे साथ साझा की, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सदना बार आपा सुनी चौकी सी भेंट वार्ता सामाजिक कार्यकर्ता श्री धर्मेंद्र विश्नोई सुनी तेज देवड़ारी बातचीत। इनमें जीव दया पर चौकी चौकी बातें करी, उन्होंने पानी पिलाणु रहन, उनकी रहन वास्ते व्यवस्था करनी और सगड़ा मेनखान ने पूरे समाज ने वन्य जीवारी सुरक्षा वास्ते जागरूक करना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: साधारण ब्रेक के बाद आप फिर स्वागत है। फरमाइश है जी की लोगों लग मां दूर पहुंचने लाग रही है। बालर वासू फरमाइश लिखन वे जी है शरण कुमार सुथार और जुगत सिंह। साथे साथे गांव लूणी जोधपुर से फरमाइश लिखन वे जी है सबाना बानो काजोल और आदिल खान और रुखसार बानो। मांगीलाल जी सिरवी अपने साथ जुड़िया है चेन्नई से।

छात्रा यदि आप मासिक प्रोग्राम में जुड़ना चाहो, आप फरमाइशा भेजना चाहो, आप अपना पसंद रा गीत सुनना चाहो, तो आप माने व्हाट्सएप पर नंबर माते मैसेज लिखा ने भेज दे रहो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 94133293 359। कई फरमाइश है जिकि माँ दूर पहुँचती हुई है। मोखा बाड़मेर से फरमाइश लिखन भेजी है प्रहलाद सारण। सुमित जहांगीर है जगह अपने सागे जुड़िया है माता का थान जोधपुर सू। और कंवरा राम सारण, सतीश सारण, चंद्रिका फरमाइश लिखन भेजी है खारिया खुरद बाड़मेर सू। भेड़े भेड़े नाग सिंह जी राजपुरोहित अपन फरमाइश लिखन भेजी है गाँव मीठा तहसील सिंधरी सू।

छात्रा राजस्थानी में एक कहावत है, घी ढोलिया मारो की नहीं जावे, पानी ढोलिया जीव जावे। छात्रा जिंदगी ने जीवन वास्ते पानी रो घणो मोल है, और आ बात आपा राजस्थान में बैठर मारवाड़ री और इशारो करता थका करा तो इनरो मोल और बढ़ जावे। घरणी पुरानी बात को नहीं, जद आज जका युवा मिनक है उनारा परिवार में बड़ा बूढ़ा मिनक पानी बचावन रे सारू दिन में एक दो बार तो कई देवता की पानी ने क्यों कमाओ। इन रो बचाव करो, संरक्षण करो, काई ठा हो कि आ समस्या घनी बढ़ जाए। बदलते पर्यावरण में बरसात री कमी सालों साल ज्यादा होती जान लाग रही है। भूजल रा स्रोत है जगह खत्म हो रहा है। सरकार पानी घर घर पहुंचा तो रही है, लेकिन समय समय माथे इन री कमी रो एहसास भी आपन हुए। और जो पानी आवे वो कतोक साफ है, पीवन जोगो है कोनी है, इन रो सवाल घनी बार उठे।

नीति आयोग री रिपोर्ट रे सारू 60 करोड़ लोग जल तनाव रो सामनो आबार कर रिया है। पानी री कमी हो, पानी यदि प्रदूषित है तो उनसु सालाना 2 लाख हेजिक अकाल मौतें भी हो रही है। केंद्र सरकार 2019 में जल जीवन मिशन शुरू तो करियो, उन टाइम घर घर नल जगह पुग्या, उना रोज को प्रतिशत है वो है 16.72%। वर्तमान में उनरी बढ़ोतरी हुई है 82.03% रियो है। विचार लायक बात तो आ है कि जगो पानी आपा काम में ले रिया हाँ पीवा हाँ, जगो भारत में है 70% जगो सतही पानी है वो दूषित है। ऐ सब आंकड़ा कोनी, आनवाल भविष्य सारू घनी मोटी चेतावनी है। आपा सभा ने मिलर जल स्रोत रो बचाव करनो चाहिए, उनारी साफ सफाई रो ध्यान रखनो चाहिए, बरसात रे पानी रो भंडारण करनो चाहिए ताकि इन पानी री लड़ाई में आपा जीत सका, खुदरो और आने वाली पीढ़ी रो जो को जीवन है बिना पास सोरो बना सका।

साधना और फरमाइश आज की पहुंची है। मेरा नाम बावड़ी जोधपुर सूँ, लेखनवाड़ा है चेलाराम मेघवाल, रविंद्र, देवेंद्र, अनीता और फूली देवी, भीख सिंह राठौड़, विजेंद्र, रक्षा, मोनिका, जसो कंवर सोलंकी अपने साथ जुड़िया है। गांव चोरड़िया, तहसील सतरावा, फलोदी सूँ। गाँव इसरोड़ चौहटन सूँ अपने साथ जुड़िया है जसवंत बेनीवाल, दलपत बाना, नवल किशोर बेनीवाल, भेड़े भेड़े, दिनेश सोडा, रुद्राक्ष सोडा, भाव्यान सोडा, रमनदीप सोडा अपने साथ जुड़िया है जोधपुर सूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान

0: द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. in West Bengal rescue operations.

किसान भाई अपनी पसंद का कार्यक्रम चौपाल सुन सकते हैं आज शाम 7 बजे और 7:30 का वक्त रहेगा सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम का।

साहित्य सुधा के अंतर्गत आज हिंदी काव्य पाठ सुनिएगा उर्वशी चौहान से, वक्त रहेगा रात 9:15 पर।

फिल्म संगीत सुनिएगा आज रात 8 बजे और शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात 10 बजे से। ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। और आइए अब सुनते हैं हमारी कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका भी प्रसारण समय। कल शाम 7 बजे से आप सुन सकते हैं ICC वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण।

कल सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस और भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा वंदन कल सुबह 6:15 पर। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 7:00। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार का वक्त रहेगा हमेशा की तरह कल सुबह भी 8:30 का। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा कल सुबह 10:00 और दोपहर 12:00। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं कल सुबह 10:30 पर और दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:05 पर सुनिएगा कृषि जगत कार्यक्रम। नारी वाटिका महिलाएं अपनी पसंद का कार्यक्रम सुन सकती हैं कल दोपहर 1:15 पर और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोता अपनी पसंद का कार्यक्रम युवाणी सुन सकते हैं हमेशा की तरह कल शाम भी 5:00।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।

0: पहलू शामिल हैं जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेश मन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसंपर्क इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्य मन्त्री मनोहर लालः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सेन्ट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मन्त्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोऽपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
1: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं मेघालये, आन्तरिक कर्णाटके, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिमबंगप्रदेशे, सिक्किम राज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासर पर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अण्डमान निकोबार द्वीपेषु, आन्ध्रप्रदेशे, बिहारे, गुजराते, झारखण्डे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्यप्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तरप्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तं एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 दिनांकादारभ्य 14 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु 7 द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमा चानू करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलम्बिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम् 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशम् 5-0 पराजयत। इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरीय चैनल है। आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर जिले की चिट्ठी और 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई

0: को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों की आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन को रवाना किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की जन जागरूकता के लिए ब्रांडिंग ऑटो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजधानी जयपुर के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे।
1: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
0: समारोह में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का माध्यम बन रहे हैं।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा, साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर हुई पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय बैठक में कही। श्री शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। बैठक के दौरान एचआरआरएल प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न उत्पादों के नमूने भेंट किए गए। गौरतलब है कि रिफाइनरी से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 5 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना के साथ प्रवेशोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने अपने क्षेत्र में घर घर संपर्क कर जन समुदाय को खिलौना बैंक की जानकारी देंगी। 3 से 6 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का चिन्हीकरण कर अभिभावकों को 1 जुलाई के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को सुबह 9 बजे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक का शुभारंभ होगा। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने आज जयपुर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाव बागड़ी से मुलाकात की। श्री बागड़ी ने उनकी शिष्टाचार भेंट थी। गौरतलब है कि आयोग के सदस्य श्री केसरी सिंह को हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में डोंबिवली के शार्दुल शेखर विचारे ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अभिनव

0: सतीश ने दूसरा और तीर्थ जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का मुख्य परिणाम आज जारी हो सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज हुई बैठक में वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम का अनुमोदन किया गया। इस बीच बोर्ड ने आज सुबह कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नतीजे जारी किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 1967 में पासपोर्ट अधिनियम लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा और सशक्त नागरिक के संकल्प को दोहराना है। देश 2014 में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या के साथ 77 था, जो अब बढ़कर 545 हो गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छोटे और दूर दराज के शहरों के लोगों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके। हाल ही में हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि देश में पासपोर्ट की बढ़ती तादाद बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या बढ़कर 138 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट मुहैया कराने की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। ये विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है।
0: भारतीय सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सेना तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाने और आपदा के समय नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के संगराना 24 और 25 आरबी गांवों से इस ट्रेनिंग की शुरूआत हुई। ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। डीग जिले के कामा क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के शिकार लोग तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा कर पैदल जा रहे थे। सभी घायलों को कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक हुई इस घटना से भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। प्रदेश में प्री मॉनसून की बरसात कई जिलों को भिगो रही है। आंधी बारिश की गतिविधियों के कारण पिछले कई दिनों से प्रदेश में हीट वेव से राहत बनी हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में अब तक 25 जिलों में असामान्य बरसात हुई है। 3 जिलों में अधिक पानी बरसा है, वहीं 3 में सामान्य और 9 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल उदयपुर को छोड़कर सभी संभागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार हैं। 28 जिलों में येलो और श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इस बीच आज हनुमानगढ़ में दोपहर बाद मौसम बदला और धूल का गुबार छा गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग, ग्वार, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण

समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन की ओर से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। आयोग ने बताया कि इस वर्ष की चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद विजेता स्टार्टअप को 3.5 लाख रूपये का सीड ग्रांट मिला। वहीं उपविजेताओं को 2,20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों को आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

अपने जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बीकानेर जिले में इन दिनों जल संरक्षण, शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, कृषि, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। मॉनसून की आहट के बीच किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनेक रेल परियोजनाओं और रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों पर काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर के डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। दोनों मंत्रियों ने आमजन के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन में योग के महत्व पर बल दिया। योग दिवस से पहले भी जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेद विभाग के विद्यार्थियों ने जूनागढ़ किले और पब्लिक पार्क में योगाभ्यास कर लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जूनागढ़ किले में सामूहिक योगाभ्यास किया। अधिकारियों और जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। जिले में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आम जन को राहत पहुंचा रहे हैं। शिविरों में लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

भूमि संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रमाण पत्रों और लोगों की अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। रामसरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में घुमंतू सासी समाज के कुछ परिवारों को निशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान किए गए। वर्षों से स्थायी आवास के अभाव में जीवन यापन कर रहे इन परिवारों को अब अपना घर बनाने का आधार मिल गया है। लाभार्थियों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया। उधर पशुपालकों के लिए भी सेवा शिविर उपयोगी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कई पशुपालकों ने अपने दुधारू पशुओं का बीमा कराया। पांचू क्षेत्र के बंदड़ा गांव में आयोजित शिविर में पशुपालकों को योजना की जानकारी दी गई और मौके पर ही बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय

0: कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों, जैविक संसाधनों के उपयोग और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि विभाग द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए कृषि सखियों और प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचा सके। जल संरक्षण को लेकर भी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, बारिश के पानी का संचयन और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई। लोगों को पानी के संरक्षण और जल स्रोतों की देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला परिषद परिसर में एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्री डूंगरगढ़ में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई न जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया जावेला। और देश माए नहना और दूर दराज रा शहरा री जनता ताई पासपोर्ट रो सुविधा पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्र रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर विधानसभा हलका माए विकास रा 631 करोड़ रूपये बत्ता खर्च वाला कामा री शुरुआत कीनी और पूरा भिया काम जनता ने सौंपिया। ई मौके राखी ज्या कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री नालिया री सफाई सारू सुपर सकर मशीन, कचरो भेड़ो करण री नुवी मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन न रवाना कीनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 रा बारा माए जाग जगावन रा मकसद ब्रांडिंग ऑटो रिक्शा नई हरी झंडी बता रवाना कीना। श्री शर्मा पात्र लोगा ने जमीरा हक वाला स्वामित्व कार्ड ई दीना। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री कहो कि सरकार राजधानी जयपुर रा विकास सारू लगातार काम कर रही है। वह बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत करेला।
2: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
1: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरा रो जिक्र करता था का मुख्यमंत्री कहो कि ऐ शिविर जनतारी परेशानियां तुरंत आगेकरण रा जरिया बन रहा है।
2: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।

0: कार्यक्रममा संसदीय कार्यमन्त्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास मन्त्री झाबर सिंह खर्रा, जयपुर रे सांसद मंजू शर्मा समेत जनता रा केही नुमाइन्दा और मोटी तादादमा जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मारा रहवास माथे अहलकारा सागे मीटिंग कर पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम रे प्रगति रे बारा माए विगतवार जानकारी लीनी। मीटिंग में श्री शर्मा कहो के पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान देश री ऊर्जा हिफाजत रो मजबूत खंभो बनवा सागे प्रदेश रो ग्रोथ इंजन साबित हुएला। राज्य रा आंगनबाड़ी केन्द्र में 3-6 साल उम्र ताई रा बच्चा सारू शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रो खास अभियान चलाई चियो है। महिला और बाल विकास विभाग री ओर 5 जुलाई ताई चलाया जावन वाला ई अभियान रातेत आंगनबाड़ी केन्द्र में खिलौना बैंक खोलन सागे प्रवेशोत्सव और पौधा रोपण रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक वासुदेव मालावत बतायो कि 30 जून ताई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकारी मदद घर घर जार खिलौना बैंक री जानकारी दी जावेला। इस आगे 3-6 साल ताई रा स्कूल नी जा रहा बच्चा ने पछाण कर वारा मायता ने 1 जुलाई ने आंगनबाड़ी केन्द्र में खिलौना बैंक री शुरुआत रा कार्यक्रम सारू न्योतो दियो जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग रा कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह आज जयपुर रा लोक भवन में राज्यपाल हरिभाव बागणे शिष्टाचार भेंट कीनी। आयोग रा सदस्य केसरी सिंह ने हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष री जिम्मेदारी दी जी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI मई 2026 में लीरी जी CA इंटरमीडिएट परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। परीक्षा में डोंबिवली रा शार्दुल शेखर विचारे अव्वल रहा, अभिनव सतीश दूजी और तीर्थ जैन तीजी ठौड़ माथे रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। बोर्ड रा अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रो मुख्य परिणाम रो ऐलान ही आज जारी वेवन रा आसार जताया। वे बतायो कि आज भी मीटिंग में VDO परीक्षा रा अंतिम परिणाम ने मंजूरी दे दी जी। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ओ दिन साल 1967 माय पासपोर्ट कानून लागू हेवन री याद माय मनायो जावे है। इनरो खास मकसद सुरक्षित पासपोर्ट, आसान सेवा और मजबूत जनता रा संकल्प रो दोहराव है। पासपोर्ट सेवा दिवस रे बारा माय पेश है समाचार कक्ष सालेहा गाजी री रपट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र री पहुंच लगातार बधाई जा रही है। जिनो नाना और दूर दराज रा शहरा रा लोगा ने ये आसानी पासपोर्ट मिल रहा है। हाल ही माए व्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन माए विदेश मंत्री SJ बतायो कि देश माए पासपोर्ट री बढ़ती तादाद उम्मीद माए बढ़ोतरी रो दर्शाव करे है। माली साल 2025-26 माए पासपोर्ट री तादाद बधर 138 लाख वेगी। वे बतायो कि पासपोर्ट मुहैया करावन री प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। आ विकसित भारत बनावन रा काम माए प्रेरणा देवन वाली खास ताकत रा तौरू काम कर रही है।
0: फौज री ओर श्री गंगानगर जिला रा सरहदों लाग्योड़ा संगराना 24 और 25 RB गांव माए जनता माए जाग जगावन और सुरक्षा सहयोग मजबूत करण रा मकसद वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाई चियो है। इन जरिए शंका लायक हलचल री जानकारी फौज ताई पुगावन री प्रक्रिया बतावन और आपदारी भगत जनता और फौज बीच मदद बधावन रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। वो कार्यक्रम 30 जून ताई चलेला। डीग जिला रा कामा हलका माए आज एक तेज जा रही कार करीब 10 जना ने टक्कर मार दीनी। कार री फेंट माए आया लोग तीर्थराज विमल कुंड री परिक्रमा कर पैदल जा रहा। जख्मी लोगों ने कामारा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराई चिया जठों

0: दीन दयाल भाई, कई हाल चाल है, कई नविता जी?
1: गुरिंदर भाई, हालचाल बहुत बढ़िया है और नई ताजी तो फिलहाल सबो मोटी एक ही है के चारा करनी जी को है आभा रामायण में बरस रियो है लोगा रे और किसान भाइयों रे चेहरा माते खुशी री लहर है। आ एक सबो मोटी सूचना है अबार वास्ते।
0: देखो ऋतु आयो, मौसम में परिवर्तन वे, जिन चीज री उड़ीक वे बरसात री, वो हुन लाग जा तो निश्चित तौर पश्चिमी राजस्थान रे किसान रो जो को साल भर घर परिवार रो अर्थतंत्र है वो बरसात माते टिक्योड़ो है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग आधी 60-80% जकी जनता है उएरो आधार पानी माते है, बरसात माते है, खेती माते है। तो जितो अच्छो बरसात हुई, जितनी अच्छी पाणत हुई, जितनी अच्छी खेती हुई, जितनी बढ़िया अर्थव्यवस्था हुई,
1: बिल्कुल ओपत तो पूरी तरह से यदि आप देखा निश्चित रूप से आज तकनीकी रे क्षेत्र मायने भी आप बहुत आगे बढ़ियो रहा, हर क्षेत्र मायने अच्छो प्रयास हो रही है। लेकिन कटे न कटे आप देखा तो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था रो जिको मुख्य आधार है वो कृषि ही है, क्योंकि कृषि में ओपत होयेला बढ़िया तो लोग जिको है काम धंधा ही चली, व्यापारी चली, दूजी तकनीक काम आई, बाजार मायने उठाव होई, हर चीज कटे न कटे डिपेंड है पूरी तरह आन अपनी कृषि व्यवस्था रे माथे।
0: देखो भाई कि जब पश्चिमी राजस्थान में पहला नहर नहीं तो पीने रे पानी रही हाबला पड़ता,
1: बिल्कुल पड़ता सा,
0: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर ताई पूरी धोरा धरती ही, अरे ऊंचा ऊंचा धोरा होता उठे, मतलब कहीं एक तरह निर्जन क्षेत्र हो तो,
1: बिल्कुल सा,
0: कोई छोटो मोटो 5-7 घरारो गांव हो तो पच 20-20-30-30 कोस तक कोई मिनक देखने नहीं नहीं मिलतो
1: ना भाई। हाँ छोटी ढाणिया वाला जो स्थिति है ऐसा,
0: आ गंगारी लकीर आई और नहर रो पानी आयो और आज अगर उठे आप जान देखा या उएरो जो को अंतरिक्ष चित्र देखा और उएरी तुलना करा के 30 साल पहला ओ मरुस्थल एड़ो होन आज एड़ो है तो आश्चर्य वे विस्मृत हो जा दुनिया के 30 साल महीने कितो भौगोलिक बदलाव आयो है, कितनी हरियाली आई है। तो जीवन रे वास्ते पानी जो है वो बहुत जरूरी है।

0: लार ले 50-60 साल हूँ, और जो को चंबल है, व्यास है, चिनाब है, आ हैंगर और पानी जो को व्यर्थ रूप हूँ, पड़ोसी देश रे जाओ तो न तो वो काम में ले तो वो समुद्र में जाओ तो।
1: बिल्कुल
0: हमें भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर बाद सिंध तास जो को सौदो करार करियोड़ो उए ने मुत्तिल कर दियो कि नहीं भाई, मैं इन तरह रो कोई फर्जी करार नहीं माना जो को पहला कोई किनी दबाव रे मायने बनायोड़ो है।
1: बिल्कुल।
0: अब भारत रे मायने सब मोटी योजना चल रही है कि नदियां ने आपस में जोड़ो, और है जकी हिमालय री गोद छह नदियां निकल रही है, व्यास,

0: सतलुज है नी, और वाने अगर आप जोड़ आपने खास तौर माते हरियाणा पंजाब जैसलमेर गुजरात जेड़े राज्य रे सिंचाई क्षेत्र में काम में ले ला तो आने वाले 10 या 20 साल रे महीने भारत री तस्वीर जको एकदम बदल जाए।
1: आ बात बिल्कुल सही कही गुरविंदर भाई, क्योंकि भारत री तस्वीर वैसे तो दिनों दिन बदलती जा रही है, और आप जो की अगला 30-40 साल मायने भी यदि आप सर्वेक्षण करा तो निश्चित रूप से धरती माते एक दानी चुनर ओडी जी है, हरियाली री एक नई चादरों खींची जो है, और ओ मामलो और भी आगे बढ़ेला, क्योंकि ज्यो ज्यो सिंचाई री व्यवस्था बढ़ेला सब चीजा रो तरक्की रो आधार है जल, क्योंकि सारी सभ्यतावां संस्कृतियां भी बटेज पनपी जटे जटे नदियां रे आसपास रो किनारो हो क्षेत्र हो और सारा तीर्थ स्थान नदियां रे किनारे माते बसियोड़ा है, तो निश्चित रूप से जल व्यवस्था जी की है बा आपने कल री व्यवस्था वास्ते बहुत जरूरी है। तो आ एक बात बहुत ध्यान में रखनी है, गौर करनी है कि पानी बचावाला और पानी ने संरक्षित रखाला तो आपानी सभ्यता और संस्कृति भी संरक्षित रहेला।
0: जल है तो कल है, और जिन तरह जकी है नदियां है वहां नदियां रो जो को रुख मोड़न रो प्रयास भी कियो जा रियो है, उठे मोटा मोटा बांध बनान उठे अगर बिजली स्रोत उत्पन्न कियो जावे तो बिजली माते ही आपा एकदम आत्मनिर्भर हो जावा
1: बिल्कुल,
0: और पानी री कोई कमी नहीं रहे, वरना आज पश्चिमी राजस्थान में देखो पानी री कितनी किल्लत है। तो देखो कि आपानी भाव देखो कि आपा खुद तीसा रे और पड़ोसी ने पानी पारिया और वो पड़ोसी ला रहे 50 सालू अठे आतंकवादी भेज और निर्दोष लोगा ने मार
1: रही है,
0: बर्दाश्त री भी कोई हद हुए के ला रहे 25 सालू चाहे मुंबई रो हमलो वो, चाहे संसद माते हमलो वो, चाहे उड़ी रो हमलो वो, पहलगाम रो वो, भारत री सरकार हमेशा वा कोशिश करी के भाई आ लोगा ने अकल आ जावे समझ में आ जावे के भाई इन तरह रे आतंकी घटनाओं 140 करोड़ आबादी रे देश रे माते घणो की फर्क नहीं पड़े, लेकिन बर्दाश्त री हद पूरी हुई तो ऑपरेशन सिंदूर मुजब जिन तरह पड़ोसी देश रे गालन थप्पड़ पड़िया
1: बिल्कुल सर,
0: तो वो चारों खाने चित हो गयो, मैं देखता हूँ कि वो झूठ बोले कि मैं जीत गया फोड़ी कई क्या एक बढ़िया फोड़ी वेन पच वो नीचे पड़ियो तो टांग ऊपर मेले के हो देखो मारी टांग ऊपर मैं जीत गयो तो देखो भाई लोगा भारतीय जकी सरकार है या भारतीय लोगा रो कठी हार जीत रो कोई प्रश्न नहीं है, नहीं माने जीत रहे उन्हीं खुशी है, नहीं हार कोई जावे दुश्मन तो वो रो कोई है, मैं तो आज चाहवा के वे भी प्रेम रहे
1: बिल्कुल शांति और सद्भाव
0: शांति सद्भाव रहे, रोटी खावे ना आपरी देश ने आगे बढ़ावे, लाल बरसा में आपा अपने देश ने आगे बढ़ा रिया
1: बिल्कुल सर।
0: अगर थे कोई जगह गरीब बच्चा है बने दिमाग रे मायने कोई इन तरह रो कहीं गंद भर दियो
1: फितूर गाले
0: फितूर गालन उए ने जेहादरी शिक्षा दे और मिनक मारन री बात करो तो थारो खुदरो ही नाश होई
1: बिल्कुल सर,
0: थे खुद ही खत्म हुआ, क्योंकि जकी चीज मिनक मारन री बात करे या कह के नहीं ओ हाकरो है नो काड़ो है पाकिस्तान रा लोग कुण है वे भी तो अठे
1: बिल्कुल
0: वो एक भाई बाला फेंक वो नहीं है कहीं नीरज हो कहीं हो
1: नीरज चोपड़ा
0: हाँ वो सिल्वर मेडल जीतियो गोल्ड मेडल कोई पाकिस्तान रे लड़के जीतियो तो वेरी माँ कहो कि भाई ओ इज मारो इज बेटो है कहीं फर्क है
1: सही है।
0: तो आ सोच है भारतीय लोगारी और आप भी माना के अक्रांता अठे आया लोगारे माते जुलम करिया बाणी सभ्यता संस्कृति विचार कल्चर माते बदलाव करियो है तो एनी सिंधी सिंधु घाटी सभ्यता रही लोग है
1: बिल्कुल है सर,
0: कठो 12 आन तो नहीं रोड़ा है तो 12 रा जका आक्रमणकारी हा आक्रांता हा बे तो समूल नष्ट ही हो गया भाई
1: बिल्कुल। गुरुंदर भाई अबार आप जी की एक बात कही और मैंने एक महिला शक्ति री बात आई और मातृत्व री बात आई, आज रो दिन जी को है वो भी खास रूप से एक बार जी को यहाँ आप बात करा तो महिलाओं जुड़ियोड़ो है, आज है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

0: देखो कि दुनिया री आधी आबादी महिलाओं वाली है।
1: बिल्कुल है सर।
0: तो कूटनीति जकी है रचना, तो ये रे महीने बिना महिलाओं री भागीदारी कोई रचनात्मक नीति तय नहीं हो सके,
1: बिल्कुल नहीं हो सके।
0: और जितनी आज के देश रे मायने आप देखा, चाहे विदेश मंत्रालय है, उरे लारे रो जो फीडबैक है या थिंक टैंक है, उनमें पुरुषों रे साथे साथे महिलाएं बराबर री भागीदारी है।
1: बिल्कुल सर।
0: क्योंकि महिलाओं री खुद री समस्या है, समाज री समस्या है, महिलाओं रो जो संप्रेषण करण रो या अभिव्यक्त करण रो तरीको है वो बड़ो संवेदनशील है।
1: इरो कारण है गुरिंदर भाई, जिकी महिला घर ने गृहस्थी ने बिल्कुल तरीका गाड़ी चला सके, बा महिला समाज ने क्यों नहीं चला सके और राष्ट्र ने क्यों नहीं चला सके। तो आज एक ऐडी बात है जिकी हूँ प्रेरणा ले, और महिला मंडल रो आज हर जगह सशक्तिकरण हो रही है, विकास हो रही है, और महिला शक्ति आगे बढ़ती हुई देश रे वास्ते यूं कहना कि लूटा प्रयास कर रही है।
0: देखो भाई लोग, जको आदमी आके के छोरिया ने नहीं पढ़ाना वो ये रो मतलब आदमी नहीं है, वो पापी है, राक्षस है।
1: बिल्कुल सर।
0: जको आपरी छोरिया ने नहीं पढ़ावे इनू मोटो पाप करनालो इन धरती माते की पैदा नहीं हुए। लड़का लड़की एक समान है, बच्चिया ने पढ़ाओ लिखाओ, वाने पगा माथे खड़ो करो। मैं देखियो नैनी थके टाबना रो ब्याह कर देन, अरे भला मीना।

0: कोई छोरी पैदा हुई है, कोई बच्चा पैदा करने की मशीन थोड़ी है रे। हमें ही अक्ल नहीं आवे, दुनिया चांद माते गई परी तू थारी छोरिया ने पढ़ावे लेके ना बकरी चार ने भेज दे, भेड़ा लारे भेज दे, क्यों उहेरी जिंदगी कोनी, वह कहीं सपना नहीं देख सके, वह कहीं पगरे माते खड़ी नहीं हो सके।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आत्मनिर्भर युवती आत्मनिर्भर लड़कियां हो जना इस देश आत्मनिर्भर होवेला, और देश ने अगर विश्व री शक्ति बनावनो है, विश्व गुरु बनावनो है, तो इन आदि आबादी ने पढ़ा लिखा और संस्कारित बनावनो पड़ेगा।
1: और आ बात आप देख रहे हैं गुरविंदर भाई के भारत में भी आजादी रे बाद हुई विकास लय चल रही थी, और अबे तो विशेष रूप से बात करना तो आप एड़ो शायद कोई फील्ड नहीं रियो है, एड़ो कोई क्षेत्र नहीं रियो है कि जन क्षेत्र रे मायले महिलावां अग्रणी नहीं है। भारत में तो ग्रामीण महिलावां भी आज री तारीख में आप देखा तो आत्मनिर्भर हो रही है और रोजगार रा साधन चला रही है नहीं?
0: बिल्कुल। तो, देखो कि कई लोग लकीर रा फकीर बनियोड़ा है कि भाई मारे तो इन परंपरा में पढ़ाई लिखाई करानी कोनी छोरिया दी,
1: तो भाई
0: तो मैं आई मना करियो कि छोरिया पच पैदा ही क्यों है। तो लड़का लड़की एक समान है, कोई अगर भोलेपन में आके कि छोरिया अलग है या कमजोर है या नहीं पढ़ सके तो एक खोटी बात है, उन माशरे ने उन समाज ने लारे राखण की बात है कि अगर लुगाया पढ़ी लिखी नहीं हुई नी तो वो घर लारे रह जाई, गरीब रह जाई, पच वो गरीबी रे काम करी तो वो मारे कब्जे में रही, पच मैं क्यों जी वो करी।
1: बिल्कुल।
0: तो एक बहुत मोटी साजिश है कि लड़कियां ने मत पढ़ाओ, वे ने गरीब राखो और मारे कब्जे में राखो। तो गुंडो आदमी में नी वो आ कोशिश करे कि भाई मारे कब्जे रे मायने परिवार रेवे, वेज परिवार रेवे जका परिवार गरीब है, जकारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: जका सक्षम परिवार है, जका पढ़िया लिखिया परिवार है, जकारी लड़कियां पढ़िया लिखी है, वे किने दारे।
1: सही है सर।
0: तो भाई आज रो टाइम बदल गयो है, लड़का लड़कियां ने पढ़ाओ, और खास तौर माते लड़कियां जब तक आत्मनिर्भर नहीं हुए वे रो ब्याह मत करो।
1: आ एक मोटी बात है गुरिंदर भाई, क्योंकि बाल विवाह कर दे हुए लोग और पाई बच्ची पटे जिनते हम सवाल करे कि मने ये छोटी उम्र माए ने क्यों पढ़ना ही, तो आप रे समय कई जवाब रेवे।

0: बिल्कुल। और हमें देखो कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो, तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा ने दिराओ सीख
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सीमा डेरी गूंज।

0: अरे अरे अरे फटकड़ी ओडाली ओड़ी भाई मैं आवरी है क्यों है बिको कह नहीं कुका रोड़ा करो ओ कूट जोड़ा मैं आवरी भाई अट आवरी कमरी में आवरी कौन है
1: मैं नीलम।
0: ओ आओ भाई नीलम आओ
1: राम राम सा
0: राम राम राम राम कदी कोई है धोक देवड़ा दूजा कदी
1: प्रणाम करो सा।
0: हाँ जीव तारो वाह भाई ओ वाह नीलम दूजो होना वो कई है जो हमसार है मैं पानी कदे कोई भाई।
1: हाँ मैं पानी दी तो हैंग वार्ड जोवे है
0: बार जोवे पड़े थार तो है जिको कह नहीं के ओड़ बाकर नाला गीत ना हुनो के है जिको रस मारे नाम माते और थे जिको कहो रस मारे
1: हाँ चीज बात है
0: तो भाई ये कह भंडेरा रीत रिवाज करन गया
1: गया
0: तो बद बे कोई कह जिको आज थाने कहे बहुत लगन भूगा
1: हमें जमानो बदलियो को नहीं
0: बदलियो तो है
1: पछे
0: मानता सा है बदलियो पर कह नहीं की लुगया से पहला एड़ी जड़ी होती मिन की एड़ा रेड़ो
1: एड़ी चा
0: हम ठीक है कि कोई मगजू थोड़ा घना थे बदल गया तो बदल गया बाकी पहला दौड़ धंधा करता है जो कह नहीं आप कह होता जी को हिला होता जब है जो की को दीखता नहीं हमें कहो है कि भाई कह कह हाउ कह फालतू बैठो वह नहीं उन्हें कई है जो बात हो जाए पढ़ाई है भाई देखे बात तो मान घर सा दुबई जात में नमो है और वो तो नमो यू करू भाई कह देखो कह नहीं लुगी री रचना है बा रचना कह नहीं कुदरत की होश विशाल करी
1: है
0: समझे नहीं
1: सही बात
0: क्योंकि थे जट ढूको नहीं तो उठ पद कह नहीं कह कह कह करो जड़े करो जे लुगी जा ढूकी है कोई घर रो घर को नहीं करनो वे तो करन छोड़े और जे उन्हें घर ने घरानो बनानो वे
1: तो बनाए
0: तो ही बना दे क्योंकि जे हुई लेन ढूकी है नहीं तो दड़ो वे तो है जो उन्हें खाडू करन छोड़े और खाडो वे तो कटरी लाला धुड़ू ना कर पा चुका है दड़ो कर दे
1: अच्छी बात
0: है भाई कह होड़े कला है जो कह चांद में है होड़े होड़े कला लुगी जात मार्गिनी हो रही है पढ़ा है भाई कह लुगी जात ने तो नमो हुई क्या बात करियो कह थारी बात मारी कह घर बिकरा दे घर कह नहीं कह मंडा
1: सही बात
0: इन कहू कह कोई कह नहीं कोई कुटा हो और हकरो उन्हें कह नहीं जिमा हो तो दही कला है लुगी जात
1: लुगई में है
0: समझे नहीं बात है भाई लुगई जात ने कह भाई देखो कोई नहीं फूको आज तक समझे नहीं और भाई क्या उसमें क्या है कि भाई चार हट है एक त्रिया हट राज हट बाल हट है जो लुगई हट
1: है
0: जे लुगई जात हट कर ले जोगी हट है
1: जोगी हट
0: हाँ
1: त्रिया हट एंड जोगी हट
0: हाँ
1: तो सही बात है
0: हट मा तो लाग गवे तो फज कह दियो नहीं के
1: तेवड़ी हो वेजे को करन
0: हाँ कर छोड़े
1: करन छोड़े
0: आ तो फज बा कह नहीं हटरी बात है पर मैं देखे कि आप आपरा गुण है आप आपरा कह नहीं
1: तो आज नवलोबा कूट नीति रे मायने महिलाओं रो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कूटन में नहीं
0: तो
1: इन मायने यू है कि भाई महिलाओं ने यानी राजनीति रे मायने भागीदारी देवनी चाहिए
0: हाँ आ बात को आके संसार में कुटन में सॉरी है मास्टरी होगी है हाँ तो कौन
1: ना
0: कुट मार नहीं करना भाई
1: गंदी बात
0: है हाँ गलत बात है पड़ा एक राजनीति में हक कूद मिलना
1: चाहिए
0: और अपर देश में भाई देखा है कि बोटाड़ो राज है तो लुगई जाती है जो कह नहीं कि भाई लारे कोरिया ने अपर प्रधानमंत्री लुगई जात रियोड़ा और है जो राष्ट्रपति है जो दो दो लुगई जात ठीक है नहीं तो अपर तो कह नहीं के कानून मुझे भैंक बात मोटी है और लुगई जात ने जीता हक कूद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उतार थाने कोई नहीं दिया
1: सही बात है
0: ठीक है
1: सही बात है
0: और थे कहीं भाई

0: थोड़ा कह के भाई की थोड़ा घणो कह उजार सहज को लाओ तो है बात भली हो ही।
1: हाँ सर।
0: और बाकी तो भाई ये कह नहीं के भाई थाने दिन दिन है।
1: हाँ सर।
0: और भाई देखो के कोटि कोटि नमन है। अबे भाई कोई लुगी जात रो कह नहीं बढ़िया कोई गीत रो है तो होना।
1: हाँ सर होना।

0: वाह नील में वाह बढ़िया करियो कह घर घराणो बड़ा छोड़ियो नहीं तो गुदरा सी इतना कर देना कौन ही भाई देखा मार बात कह नहीं की भाई कौन मत
1: नहीं
0: वाह वाह बोली रे भाई
1: नहीं, बात तो सही है आपरी
0: हम कौन धंधो कर लो तो हुक पाओ
1: यूं
0: हमें देखा
1: नहीं हमें मैं ही हो चु राजनीति मायने जाओ
0: राजनीति तो हम जाप रही है हमारे नीति अटल देखा मैं उन्नाड़ो है मैं उन्नाड़ा देखा क्या धोड़ा काड़ा बदली आ जाई और हुड़पाड़ी करना है बाढ़ काटा करना है
1: खाद में जाओ
0: खाद भी करना है
1: तो
0: जंजर के उठा हाल बराम की करो तो है जो कह नहीं भाई देखे अगर तभी कटाउनी है मैं उगो तो एन टाइम मत कह नहीं कई कई कर
1: सही बात
0: बात है सी बात है देखे आंधी तूफानी आई और है जो कह नहीं की धोरा धरती है देखो पस कह नहीं के कई रा कई कह नहीं के भाई धोरा है उड़न कट रहा कट जाओ तो ये बात है भाई जो कर देखो क्या डीलर फूको मत दो
1: नहीं
0: काम करो काले जंजर के मारे हाथ खेत हाल जो देखो थोड़ा घड़ो फेरो दिया ऊन थे है जो थोड़ा घड़ो काम कर लो उनकी हिणिया उबा है की बेवानिया उबा है की अरुणा दूजान है जो बांधी पस कह नहीं बाट बुढ़ा मार नाको
1: सही बात
0: तो कहे है कि खेत है जो बाओ तो लीला शहर हकरा लागी और काकड़िया मचीरा हुई पूंख फली हुई और है बात भली हुई पर कह नहीं दे हो चुके आज मैं मत कर जिद हुई ठीक है ना तो है भाई बदलिया आवे धोला धोला कह नहीं काली आई आई पते हली खड़ी जीन है बात हुई कई ऊट बल्द करीन कई है जो ट्रैक्टर बैन अजा उठी पते मिन कह जो कह नहीं घर छोड़ छोड़ खेत में जाए तो कोई गीत रो थोड़ा मन कोई जीव हो रो है जेरो
1: है तो सही हुणा
0: हुणा भाई
1: हुणा हुणा
2: अरे बरसा

0: ਵਾਹ ਭਾਈ ਏ ਵਾਹ, ਮਕੜੋ ਗੀਤ ਲੋ ਹੁਣੀ ਹੋਏ ਇਕਦਮ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋਗੋ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਫਦਤ ਕਹਿ ਨੀ ਉਹ ਗੀਤ ਤੋ ਮਿਸਰੀ ਵੈਜੂ ਮਿੱਠੋ ਲਾ ਗਈ ਹਮ ਬਾਤ ਬਤਾਓ ਗਨ ਕੋਈ ਵਿਗਤ ਵਾਰ ਹੈ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਮਾਰ ਗਨੂ
1: आज है ओकारनाथ ठाकुर रो जन्मदिन। आज दिन 1897 रो जन्मिया हा। ए संगीत रा शिक्षक हा, संगीत विज्ञानी हा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हा।
0: ओहो, संगीत में क्या साधना करी,
1: साधना करी होड़ी।
0: और जग चावा क्या नी बाजा बजे यार बे है जो ही कया।
1: हाँ सर।
0: और लोग है जो क्या नी मारा क्या शादी
1: रिया सर।
0: और आगे वागे क्या नी बड़े बड़े क्या नी

0: है और गुणी विद्वान मिनकारी मोटी पाता है संसार भली क्या नहीं जगह पर बारा करियोड़ा कामड़ा है नहीं
1: याद रहे
0: मैं कटी नहीं जा
1: सही बात
0: तो आने कोटी कोटी नमन है मंदेरा फूल चढ़ा भले
1: अब जगह पोत विया है वाण में है सर दरवान सिंह नेगी आज रे दिन 1950 रा पोत विया हा ए प्रथम विश्व युद्ध रे मायने ब्रिटिश भारतीय सेना रा सैनिक हासा और वाणे एनी विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित करिया
0: ओहो अंग्रेज रे तरफ है लड़िया
1: हाँ सर
0: कहनी वीरता रो हेंगो मोटो जुको कहनी तुकमो है वो विक्टोरिया क्रॉस हो तो जो आज मार परम वीर चक्र है नी
1: चक्र
0: अपने भारत देश की फौज में जिको अदम्य साहस हो जिको कह दुश्मन रो मुकाबलो करे और हंसता हंसता प्राण देवे बाद परम वीर चक्र मिले
1: यूं
0: विक्टोरिया क्रॉस मिल तो कहनी भाई क्या सूरत तो सूर ही है और मैं जिको कहनी की भाई जिको आपकी बहादुरी बताई मां पाण है तुकमो मिलियो तो आने कोई नहीं भूल सके पर बातें पर धोख देवा कोटी कोटी नमन करा मंदेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: रानी दुर्गावती ए मुगल सेना रे सामने झुकना वास्ते इनकार करियो हो और स्वतंत्रता और अस्मिता रे वास्ते युद्ध भूमि रे मायने युद्ध
0: ही भाई लगा के घणी कह नी के भाई बहादुर लुगया ही रानी झांसी री रानी वो झलकारी बाई वो और कहो कह भाई देखे का लेकू है घना नाम है
1: ऐसा
0: और बे है जिको कह नी अंग्रेजों मुकाबलो करियो और आप रो राज है जिको हो रहा बाने को दियो नी के मरना ने मोटो मान लियो पर कह नी गुलामी शहर नी
1: करी
0: तो दिन दिन है कह नी भारत भूमरी अड़ी बहादुर है जिको लुगी जात ने और बानी है जिको कह नी पर बाते पर धोख देवा कोटी कोटी नमन करा और मन मेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: पंडित श्रद्धा राम शर्मा आज रे दिन 1881 रा पोत विया हा ए सनातन धर्म प्रचारक हा ज्योतिषी हा स्वतंत्रता संग्राम रा सेनानी हा संगीतज्ञ हा हिंदी और पंजाबी रा प्रसिद्ध साहित्यकार हा इन अलावा ए जकी ओम जय जगदीश आरती अनिसा वे आज लिखिए सा
0: ओहो पंडित श्रद्धा राम जी
1: हाँ सर
0: बहुगुणी मिनख हा और कहने की भाई चारू मेरे आप रो ज्ञान रो उजास है जिको क्या है जिको
1: फैलायो
0: और देश ने आजादी दी रही और मैं कहनी सन्यासी हो नहीं तो इतना मोटा काम कल्याण पचे है जिको कहनी भगवान री आरती जिको कोई छोड़ माते गई जे
1: हर जगह
0: उन बने गाँव नाला लोग आज करोड़ों करोड़ों है तो माने शब्द रचना दी तो एड़ा कहनी बिरला मिनक है और सरदार हाथे आने याद करा परमाते पर धोख देवा कोटि कोटि नमन करा तो भाई ओम जय जगदीश आरती
1: आरती
0: होना देखा
1: हाँ सब होना

0: वाह भाई, ये मन निर्मल हो गो मारो आज। अरे आज कई दिनों कह नहीं आरती हुई, हमेशा अर्ज सुनू
1: आज आरती,
0: आज आरती हुई। देखे आज बड़को कह भाई, देखे आज दशम है भाई, दशम है, दशम री आरती हुई उड़ी। आज तो कह नहीं मन मारो जोर निर्मल हो यो, और हमें दशम है तो भाई देखो सुरमियो बना लो, चाहो तो खीर बना लो, चाहो तो चावल बना लो, चाहो तो है जो थार जैसे जो हीरो बना लो, और बढ़िया है जो तीवन सब्जी बनाओ, और है जो रसोड़ा तैयार करो।
1: ठीक है,
0: और हूँ फेर लू भाई माला।
1: हाँ सर, सही
0: माला फेर बैठो हूँ जिते थे बेलू तैयार कर दो, और हमें तारा ही खासा ऊंचा आएगा है, और क्या भाई देगा अंदाज भी पढ़न ढूंगो एंड प्रोग्राम रो टाइम ही होगो पूरो, तो भाई सेनो लेवा ही राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। जावेद अख्तर के हैं गीत के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

बहार आने तक अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास की आवाज़ में इस फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे आप। गीत के बोल थे इब्राहिम अश्क के और संगीत था राजेश रोशन का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म से एक और प्यारा सा गीत। आनंद मिलन का है संगीत, गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं मैंने प्यार किया इस फिल्म से एक और प्यारा सा गीत, लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गीत के बोल हैं असद भोपाली के, संगीत है राम लक्ष्मण का।

लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में लव स्टोरी फिल्म से अभी ये गीत सुना आपने। गीत के बोल थे आनंद बख्शी, के संगीत था राहुल देव बर्मन का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, तवायफ फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। हसन कमाल के हैं गीत के बोल, रवि का है संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं बाजीगर फिल्म से पंकज उदास की आवाज़ में। रानी मलिक है गीत के बोल, संगीत है अनु मलिक का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के

नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेड

0: संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट पार्ट।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरू नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
6: थ्रू डबरी फ्री मिशन मैनेजमेंट सिस्टम।

0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।

0: remain so.
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में आईएनएस कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: Fugitive diamond merchant Nirav Modi has been directed by a UK court to pay over $11 million to the Bank of India. The ruling was delivered by the High Court in London. Justice Simon Tinkler held that Modi is liable under a personal guarantee linked to a loan extended to a Dubai-based firm, Firestar Diamond FZE. Benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. We have a report.
2: Sensex climbed 791 points to close at 76,991. Nifty also added 198 points to settle at 24,022. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index gained 0.1% and the Small-Cap 100 added 0.4%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 8 paise to close at 94 rupees and 66 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.9% lower at 1,44,050 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.6% down at 2,22,840 rupees per kilogram. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashwani News.
1: In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in a Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. Earlier, Colombia qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. 5 people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी जोधपुर का यह सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं साहित्य सुधा के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ उर्वशी चौहान से।
4: नमस्कार, मेरी पहली कविता का शीर्षक है पसंद। लोगों को पसंद आती है आवाज उठाती महिलाएं। लोगों को पसंद आती हैं आवाज उठाती महिलाएं, खुद महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती हुई महिलाएं। माइक पर खुलकर अपने विचार रखती, बिना डरे बिना किसी दबाव के बोलती महिलाएं। किस्से, कहानियां, कविताएं सुनाती, व्यापार करती और नौकरी करती महिलाएं। अपने नजरिए से दुनिया देखती महिलाएं। पर यह पसंद तब तक बरकरार है जब इन सबके बाद भी वक्त रहते खाना बनाती है महिलाएं, घर संवारती, बच्चों को संभालती और फिर किसी बहस में चुप हो जाती हैं महिलाएं। दूसरों की गलतियों का खुद पर इल्जाम लगाती महिलाएं और इसीलिए कभी कभी लोगों को नहीं पसंद आती, आराम करती, अपने लिए अपना वक्त गुजारती महिलाएं। अगली कविता को मैंने नाम दिया है एक खत, जो बच्चों ने अपने माता पिता के लिए लिखा है। डियर माँ, प्यारे पापा, मैं जानता हूं लिखते समय मैं हजार गलतियां करता हूं, पर आज मन से लिख रहा हूं, तो सुनो। हां, मैं लिखने में कच्चा हूं, आप ही तो कहते हो ना अभी बच्चा हूं। आपने मेरे सपनों को नाम दिया, मेरी जरूरत से पहले मुझे हर सामान दिया, किताबें, खिलौने, कपड़े, मेरी हर चाहत पूरी की, मेरे लिए और मेरी एक मुस्कान के लिए अपनी नींद अधूरी की। इन सबके लिए धन्यवाद, दिल सच में आभारी है।

हाँ कहूं तो इन सबके लिए धन्यवाद, दिल सच में आभारी है, पर एक बात मुझे अब कहना बहुत जरूरी है। मुझे इन सब चीजों से ज्यादा आपका वक्त चाहिए, मुझे इन सब चीजों से ज्यादा आपका वक्त चाहिए, इस उम्र में माँ पापा से पहले एक सच्चा दोस्त चाहिए। हजार सवाल है मन में, पूछूं कहाँ और किससे, हजार सवाल है मन में, पूछूं कहाँ और किससे, क्या सही है कितना गलत है, ये बात करूं तो किससे। माँ काम में बिजी रहती है और आप ऑफिस में, और मेरे मन के पंछी इधर उधर दौड़ते रहते हैं। ऐसे में धीरे धीरे यह मोबाइल मेरा दोस्त बन जाता है, ऐसे में धीरे धीरे यह मोबाइल मेरा दोस्त बन जाता है, और फिर आप ही कहते हैं तू मोबाइल बहुत चलाता है। बहुत कुछ है कहने को पर कौन सुने मेरे किस्से, अरे बहुत कुछ है कहने को पर कौन सुने मेरे किस्से, माना आप बहुत बिजी हैं पर कुछ तो हो मेरे हिस्से। डांटो मुझे जमकर फिर बैठ कर समझा दो ना, डांटो मुझे जमकर फिर बैठ के समझा दो ना, क्या गलत किया है मैंने और कितना सही है बतला दो ना। धीरे धीरे ही सही सब कुछ सीख जाऊंगा, आज वर्तमान है आप मेरा, कल मैं आपका भविष्य कहलाऊंगा। तो जैसा मैंने पहले बताया बस उतना ही चाहिए, माँ पापा से पहले मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए। इस खत के आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ, सच में दिल से आपका राजा बेटा बनना चाहता हूँ, पढ़ लूंगा सारी किताबें, मैं अभी थोड़ा कच्चा हूँ, पढ़ लूंगा सारी किताबें, मैं अभी थोड़ा कच्चा हूँ, आप ही तो कहते हैं अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ढेर सारे प्यार के साथ आपका राजा बेटा। अगली कविता, गिरना। गिरना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, तो ध्यान से समझिए इसे, चीजें गिरती हैं, बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, चीजें गिरती हैं, बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, फिर समेटी जा सकती हैं, कुछ तो फिर से सहेजी जा सकती हैं, फिर कभी बाजार गिरता है संभल जाता है, गिरती तो बूंदें भी है देखा होगा आपने, पर सुकून दे जाती हैं, फल गिरता है कब गिरता है, जब मीठा हो जाता है, पत्ते गिरते हैं और फिर बसंत वापस ले आते हैं, यानी गिरना एक स्वाभाविक क्रिया है, परंतु जब मनुष्य गिरता है तो वह गिरा हुआ मनुष्य ही क्यों रह जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे इस सवाल पर। अगली कविता, तितलियां। तितलियों को मैंने एक भाव दिया है महिलाओं से, तो उससे जोड़ते हुए इस कविता को समझते हैं। तितलियां घर लौट जाना चाहती हैं, वापस अपने घर, तितलियां घर लौट जाना चाहती हैं, वापस अपने घर, पर उस घर नहीं जो चार दीवारी का ढांचा है, जिसे सब लोग सुरक्षा के शिखर पर रखते हैं, वह घर नहीं जहां उसने अपनी पहली सांस ली हो और वही सांस घोट दी गई हो, सांस लेते ही जन्म लेते ही। इस घर की चार दीवारी में जिंदा जला दिए गए हैं उसके अनगिनत सपने, और लाखों की मांग उस दहेज के आगे एक माचिस की तीली से भी सस्ती हो गई है उसकी देह। तितलियां उस घर नहीं लौटना चाहती। फिर वक्त के साथ बदलाव हुए, नौकरी के नाम पर उन्हें घर से निकलने की इजाजत मिली, या यूं कहें तो बेतहाशा जंजीरों में जकड़कर उन्हें दहलीज पार करने की इजाजत मिली, कब कितने बजे लौटना है इसकी सख्त हिदायत मिली। तितलियां उस घर भी नहीं लौटना चाहती, एक घर से डोली और दूसरे से अर्थी, एक घर से डोली और दूसरे से अर्थी, न जाने ये नियम किसने बनाया, चार कंधों पर दो बार सज धज कर उन्हीं घरों से निकली तितलियां, पर वापस उन घरों में नहीं लौटना चाहती, पर वह सच में अपने घर लौटना चाहती हैं, वो घर जो सबसे सुरक्षित स्थान था उसका, घूम लेती थी वह पूरा संसार वहीं इर्द गिर्द, ना कोई गिनती थी सांस लेने की, ना कोई पूछता था कब लौटेगी, किसी ने कीमत नहीं लगाई थी उसके होने ना होने की, उसकी असीम सुंदरता उसके पहनावे पर सीमित नहीं थी, निर्वस्त्र निश्चित

0: निश्चल निर्विघ्न निर्विरोध, निर्वस्त्र निश्चल निर्विघ्न निर्विरोध अपने घर में सुरक्षित थी वह तितलियां। फिर 9 महीने के बाद एक तरफा दरवाजे को भेद कर अपने घर से बाहर निकली तितलियां, अपने इस घर को तरसती और कभी ना लौटने की निराशा को के साथ हर रोज उड़ान भरती तितलियां। अपने घर लौटना चाहती हैं तितलियां। अगली कविता का नाम है परिभाषा। ये कविता एक 15-16 साल की लड़की समाज से किस तरह के सवाल कर रही है उसे दर्शाती है। अरे जोर से मत हंसा करो, ये अदब नहीं है तुम्हारी। शालीनता का गहना पहनो, अब बेपरवाह उम्र नहीं है तुम्हारी। जरा वक्त पर घर आ जाना, देखो अंधेरे से दोस्ती अच्छी नहीं। जरा वक्त पर घर आ जाना, अंधेरे से दोस्ती अच्छी नहीं। सूरज ढलने का इंतजार मत किया करो, तुम अब इतनी भी बच्ची नहीं। बालों पर कैंची मत लगाया करो, इनसे ही तो सुंदरता बढ़ती है। बालों पर कैंची मत लगाया करो, इन्हीं से तो सुंदरता बढ़ती है। छोटे बालों वाली लड़कियों के तो सिर पे फैशन चढ़ती है। देखो वजन का पूरा ख्याल रखना, कहीं बढ़ ना जाए। वजन का पूरा ख्याल रखना, कहीं बढ़ ना जाए। गोरे होने के जतन करते रहना, कहीं रंग पक्का ना पड़ जाए। सुनो, खुलकर विचार रखने का अधिकार नहीं है तुम्हें, खुलकर विचार रखने का अधिकार नहीं है तुम्हें। कल दूसरों के घर जाना है, बिल्कुल परवाह नहीं है तुम्हें। क्या 15 बरस की होते होते इतनी बदल जाऊं मैं, वो पूछती है सवाल। क्या 15 बरस की होते होते इतनी बदल जाऊं मैं, कल आजाद उड़ रही थी आज बेड़ियों में बंध जाऊं मैं। लड़की होने की परिभाषा सबने ऐसे ही सिखलाई, मुझे तो लड़की होने की परिभाषा सबने ऐसे ही सिखलाई। जो तोड़े इन नियमों को वो लड़की कैसे कहलाई। अगली कविता चाय पर चर्चा। चाय एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम अपने यादों और ख्यालों के बहाव में बहते चले जाते हैं। तो किसी दिन बैठो मेरे साथ, चाय का प्याला हाथ में थामे। कभी किसी दिन बैठो मेरे साथ, चाय का प्याला हाथ में थामे। कुछ पुराने किस्सों को एक ट्रे में सजाकर, हम आज की नहीं कल की भी नहीं कुछ और पुरानी यादें ताजा करेंगे। कि हम आज की नहीं कल की भी नहीं कुछ और पुरानी यादें ताजा करेंगे। उन बातों पर हंसेंगे जिस पर कभी बिखर कर रोए थे। देखो तुम ठहाका लगाकर हंस मत देना मेरी उस पुरानी तस्वीर पर जिसमें तुम आज भी मासूम होने की कसमें खाते हो। फिर क्या है, हम चाय ठंडी होने का बहाना कर खामोश बैठ दो घूंट चाय के साथ उतारेंगे और उतार लेंगे सारी यादें जो हमने उस ट्रे में सजा कर रखी थी। अगली कविता कि हां मैं सुंदर हूं। जो स्त्री को उसके केवल बाह्य आवरण से सुंदरता के पैमानों पर नहीं आंकती। कि हां मैं सुंदर हूं, फिर क्यों परखते हो मुझे मेरे आकार से। कि हां मैं सुंदर हूं, फिर क्यों परखते हो मुझे मेरे आकार से। कभी तो देखो मुझे मेरे व्यवहार से। फिर क्यों मेरे वजन पर इतनी नजर है तुम्हारी। चाहे हल्की हूं या भारी, पूरी कर दूंगी हर जिम्मेदारी। चाहे हल्की हूं या भारी, पूरी कर दूंगी हर जिम्मेदारी। कोमल बाहर हूं तो उतनी ही मजबूत भीतर भी हूं। कि हां मैं सुंदर हूं। तुम क्यों काया के रंगों से मुझे पहचानते हो। तुम क्यों काया के रंगों से मुझे पहचानते हो। मेरे बिना बेरंग हो क्या इतना भी नहीं जानते हो। कभी सोचा है कि कद ऊंचा हो जाने से क्या आसमान मिल जाता है। कि कभी सोचा है सिर्फ कद ऊंचा हो जाने से क्या आसमान मिल जाता। तो हौसलों का यहां क्या अचार डाला जाता। मैं इरादों का अथाह समंदर हूं। कि हां मैं सुंदर हूं। ना समझो कि बस जरूरत हूं, नहीं हूं फिर भी खूबसूरत हूं। कि हां मैं सुंदर हूं।
1: अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुधा के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ उर्वशी चौहान से। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो

0: बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे, आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या-क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा?
0: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
0: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
1: जी,
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के

0: और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती है।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशन भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में

0: अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच जी।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी।
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक बात बोला है कि हमको बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक।
1: जी
2: फिर
1: जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली सारा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी देखते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल था, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी ऐसा सोचती थी, पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा
1: जी। बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।

अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और

0: खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं, तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
1: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है?
1: मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
1: राइट नाउ आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट। But right now, I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
1: It was something that I never dreamed of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
2: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। मम्मी से रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, छोटे बच्चा में एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको बच्चे को उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ कैन डू, कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने भी काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सब की हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नॉमिनेशन मिला था सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मैं सलाह देता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर

0: थी आंख के ऊपर, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे ये मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी, और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
3: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉलिसी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव

0: असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
0: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा का विषय है
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसे हमने रिले किया। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पे। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले सुनते हैं बसंत काबरा से सरोद वादन, राग भैरव, ताल है झप।

अभी आप सुन रहे थे बसंत काबरा से सरोद वादन, राग था भैरव, ताल था छाप। आइए आपको एक सूचना दे दें, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर जोनल यूनिट नशा मुक्ति भारत पखवाड़ा आयोजित करने जा रहा है। पैदल जागरूकता रैली और एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम 25 जून 2026 को। ये प्रोग्राम बताएगा यूथ और जनरल पब्लिक को इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में और इसमें प्रचार करेंगे नशा मुक्ति समाज का। आप सब इसमें शामिल हों। चीफ गेस्ट रहेंगे इंस्पेक्टर जनरल जो कि सीमा सुरक्षा बल राजस्थान के सीमांत मुख्यालय में कार्यरत हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी पधारें। आयोजन होगा पावटा सर्किल उमेद स्टेडियम जोधपुर। समय रहेगा 25 जून 2026 को सुबह 6:30 से सुबह 9 बजे तक। सूचना समाप्त हुई। आइए कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में कविता चक्रवर्ती से सितार वादन। तबले पर संगत कर रहे हैं रज्जन द्वारका। राग है बिहाग, ताल है तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे कविता चक्रवर्ती से सितार वादन। तबले पर संगत कर रहे थे रंजन द्वारका। राग था बिहाग, ताल था तीन ताल। अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है।

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रावण में गंगा जल से कांवर भरकर शिवधाम जाकर शिवालय की परिक्रमा करके जो भी भक्त शिवजी का गंगा जल से अभिषेक करता है और विधि विधान से पूजा करता है, महादेव उसके संपूर्ण कष्ट हर लेते हैं।